0: invoking the calls of Dhillon, Sehgal, Shahnawaz, the brave sons of Bharat, the soldiers of INA. The call for Dhillon, Sehgal, Shahnawaz and to free them, they echoed across the country. And that emotional attachment with the freedom struggle and the Red Fort, it promoted the selection of Red Fort as the venue to unfurl the tricolour when India became independent. And that tradition continues with great pride. So as the nation celebrates 80th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi will lead the nation with these celebrations at the iconic Red Fort. A part of the celebrations, like we said, watch these images. 2014 was when the Prime Minister unfurled the tricolour. 2014 to 19, then 19 to 24, his second tenure, and 24 onwards, his third tenure. You will have two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force that will shower flap petals. The unfurling will be synchronized with the 21-gun salute. The Prime Minister will then address the nation from the ramparts of the Red Fort. The grand event, like we said, it celebrates the enduring legacy of Vande Mataram, of India's Yuva Shakti. And these are images that you see of the Prime Minister at the Red Fort over over the past 12 years. This will be the 13th year. I quickly want to cut across to India Today's Shivani Sharma, who joins us. Shivani, there's lots new this year, this Independence Day. But what's also remarkable, it's the Gen Z power, Yuva Shakti, that will be talked about this Independence Day.
1: Gaurav, a very happy Independence Day to you, to all our viewers, to all our team members. I'm right now at the Red Fort and I'll try and catch the fervor out here with my camera person Pradeep Gupta. You see, a lot of focus on Gen Z this time. A lot of youngsters have been invited. And as we say that 5,000 special invitees and 2,500 of them are young students, young achievers, young medalists and school students who've been participating in multiple competitions. They've been contributing in their way. So a lot of excitement and of course the security out here. As we know that there is a massive security blanket across the national capital. Aap log aaye hue hain, hum log live hain is waqt India Today par. Gen Z bahut zyada focus mein hai. Kya bolna chahega Gen Z is
2: baar? एक्चुअली हम यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड थे, एक्साइटेड थे आने के लिए, तो हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है. एक तो जेंजी के बारे में अगर बोलूंगा तो इंडिपेंडेंस इज वेरी नीडेड बिकॉज आई टेल यू पार्टिसिपेटिंग इन दिस इज वेरी नीडेड बिकॉज वी हैव लॉस्ट दैट वन थिंग ऑफ नेशनैलिटी. और लाइक यू नो जेंजी बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा हाइप कर दिया कि दे आर एंटी दैट दिस एंड ऑल, बट दैट्स नॉट ट्रू.
1: दे आर इक्वली पैट्रियोटिक,
2: नॉट एंटी नेशनल, बट दे आर एंटी पैट्रियटिज्म एंड ऑल, बट दैट्स नॉट ट्रू. वी आर इक्वली इंटरेस्टेड इन.
1: आपको क्या कहना है, व्हाट डू यू हैव टू से?
3: आई वुड से कि यंगस्टर्स को काफी सोच समझ किसी भी मूवमेंट का पार्ट लेना चाहिए. जैसे आजकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं,
1: आज तो यहाँ पर इनवाइट किया गया है युवा शक्ति को सेलिब्रेट.
3: बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं 26 साल का हूँ, फर्स्ट टाइम मौका मिला यहाँ पे आने का. इससे पहले मैं 26 जनवरी की परेड में गया हूँ मैं, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा मुझे. और मैं अकेला आया हूँ नोएडा से, एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस.
1: व्हाट डू यू हैव टू से? यू, हाउ आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशन एंड व्हाट इज योर प्लेज टूडे?
4: फर्स्टली अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू आवर मदरलैंड एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू फ्रॉम द टीवी स्क्रीन टू बी हियर एट द मोमेंट. इट्स माई फर्स्ट टाइम टू बी हियर. आई हैव कम फ्रॉम कानपुर. सो एंड आई विश दैट we keep contributing to our nation by participating in each and every moment in celebration of it.
1: Gaurav, so a lot of firsts, this time. We'll be seeing not only Vande Mataram's 150-year-long journey being celebrated, but Yuva Shakti, a special banner of Vande Mataram by the Mi-17 Air Force aircraft. And we also will be witnessing that inner first on the occasion of Independence Day from the ramparts of the Red Fort. There will be the national song which will be preceding the national anthem. So you see a lot of movement out here. Arrangements have been done well and a lot of excitement. Bharat Mata Ki! So Gaurav, we are waiting for that moment when all the dignitaries will start arriving and everyone wants to listen to Prime Minister Narendra Modi. In fact, how he is decked up today. We've been seeing in past few years the special attire on these occasions. And today,
0: you know,
1: also,
0: that's a very interesting point that you raised, that what Safa will the Prime Minister, what style Safa, what part of the country, and how long will he speak? Because when you look at statistics, this would be the 13th address from the ramparts of the Red Fort. Quite a record there. But, you know, 2014, his first address was about 67 minutes. 2015, 88 minutes. The shortest, of course, was in 2017, where it was just 56 minutes. The longest was last year, 2025, which was 103 minutes. And this time, apart from Yuva Shakti, he's likely to speak, Shivani, a lot about the vision for a Viksit Bharat in 2047 and science, technology, Atmanirbhar Bharat, especially in defense, space technology. Is all of that really high on his agenda, Shivani?
1: Absolutely, Gaurav. See, when Prime Minister Narendra Modi comes and he addresses, everybody wants to listen to him because he not only gives surprises, but he also opens new avenues about what and how the nation is moving ahead, not only in the field of defense, in the field of innovations. And when we talk about innovations, a lot is being done, and it combines the security, the Yuva, the Gen Z, and the technology. So we are moving forward. We've recently seen how the Skyroot has made a new record, and a lot of acknowledgement of the fact that how the youngsters of the country are moving ahead. They are assets to the country, how their energy can be channelized for the nation building and how they can be inspired in the right way. So today when Prime Minister Narendra Modi will be speaking, he can speak about the innovations and how it is being taken ahead in India, how the youngsters, the youth of the country can contribute in fields like technology, sciences. He can even speak about armed forces. Last year, we heard him and he saw and he said that Sudarshan Chakra is the new technology on which India is working to make our airspace, air defense systems foolproof and secure for
0: we'll
1: the future.
0: We'll talk about Sudarshan Chakra in just a moment, Shivani. Stay with me. We've just got a message from Prime Minister Narendra Modi on social media platform on the occasion of the 80th Independence Day. The Prime Minister took to social media platform to say warm greetings on the occasion of Independence Day. We remember with gratitude the countless freedom fighters whose courage, sacrifice, and unwavering commitment ensured the end of colonial rule. Their dreams continue to inspire us as we work together to build a Viksit Bharat. Powered by 140 crore Indians, our nation is scaling new heights of progress across different sectors. May this journey keep progressing at even greater pace in the times to come. And that pace, Shivani, is extremely crucial. When Prime Minister Narendra Modi speaks of this journey to a Viksit Bharat by 2047, you were referring to the Prime Minister's vision of a Sudarshan Chakra, and we saw how during Operation Sindoor, India's integrated air defense command and control system, the Made in India missiles, including the BrahMos supersonic cruise missiles in an offensive role, the Akash surface-to-air missiles in a defensive role, played a very critical role. And now, as part of Sudarshan Chakra, Shivani, you've been reporting about Kusha. Tell us more.
1: Yes, Gaurav, certainly India has been making for itself now. It's in fact making for the world too. So we do not want to depend on the foreign weapon systems. And we've seen the metal and how the Indian weapon system, including the Akash, including the BrahMos that have proved in Operation Sindoor recently. And we are indigenizing in form of making our skies secure. And Kusha missile that has been recently tested, we've seen how Sudarshan Chakra is moving ahead. The integrated air defense system, India's very own air shield, that is also going on. The program is going on very swiftly, and as soon as 2030, we expect that the initial Sudarshan Chakra will be ready. And apart from that, we are also working on a lot of drones, drone technologies. We've been reporting about it each and every day, loitering munition. So we are ready for any kind of challenges. We are moving ahead to be a country that is 100% Atmanirbhar. We've seen the Navy, how it is aiming at being 100% indigenized by 2047. And every time the ship commissions, we see that it is indigenized by 75% to 80%. And in Army also, we are seeing a lot of indigenization happening. But yes, Sudarshan Chakra happens to be one of the major programs of India. It is much required, seeing the conflicts around the globe. We've seen how the drones have been the lethal weapons, and future war ready. India wants to have its own air defense shield. So now we've seen how Sudarshan Chakra, that was announced last year only, and it's progressing quite swiftly with the DRDO moving ahead with the technologies, and we are now also roping in the private partners. So that openness and attitude of making yes. India strong is also taking these programs very swiftly ahead, Gaurav. So certainly today, once again, we'll be seeing what Prime Minister Narendra Modi has to give to the nation in terms of the preparedness as a future-ready force, more integrated. We are seeing that a lot of work is being done on theaterization also, and that project.
0: So when you
1: is,
0: see people all around you, and now we are seeing the parade, you know, youngsters gradually come there. What are their aspirations, and what do they want to hear from the Prime Minister, especially the youngsters? You know, you spoke to some of them, and they spoke of the recent you know, Gen Z protests or the youngsters protests here. The aim is to show the achievement of youngsters, those who've done extremely well across the world in the field of science, technology, winning Olympiads across the world. A lot of My Bharat volunteers. Speak to some of these youngsters. Tell us what they are looking forward to.
1: Certainly, Gaurav, I'll try and speak to them. All of them are in a rush to reach inside and take their seats at the Red Fort as we are celebrating this. But yes, this time when the youngsters have been invited, more acknowledgement of the fact that the Gen Z is the contributor, the major force of India's future. And we see young people here, the volunteers who've been here since 3 a.m. I've been speaking to some of them. They are now going inside. I'll try and speak to them. ये बताएगा कि Gen Z और youngsters पे बहुत ज़्यादा जोर है. कैसे contribute कर रहे हैं आप लोग?
5: अपन बाद में मिलते हैं भाई. हम लोग वंदे मातरम याद करके आए. हम लोग अच्छे से वंदे मातरम गाने वाले हैं. और जो भी सिविक सेंस का मेंटेनेंस जरूरी है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम लोग कई सारे बाकी लोग जो वहाँ पे भगदड़ बचाएंगे उसके सारे करने वाले हैं. हम लोग अच्छे से वहाँ पे सिविक सेंस का पालन करेंगे और कुछ भी पेन वगैरह लेके नहीं आए.
1: आप Gen Z हो, यंगस्टर्स हो, क्या एक्सपेक्टेशन है आज पीएम बोलने वाले?
0: Okay, so we will wait for another moment, excuse me, as we get that signal back, because this is the time when movement starts to take place. Because in a while from now, you'll start seeing volunteers come in. You'll start seeing cadets of the National Cadet Corps, both boys and girls. They are the ones who will be singing the Vande Mataram. They will start, and then the parade starts to form up. When this parade starts to form up, so you have a contingent of the Army, the Navy, the Air Force, and the Delhi Police, and of course, the combined bands. The Prime Minister will inspect the Guard of Honor, and there is a procedure. So the Prime Minister first goes to Rajghat. He pays homage to the father of the nation, and then from Rajghat, he comes to the Lahori Gate, the historic Lahori Gate of the Red Fort. Lahori Gate, The Red Fort has two gates, Delhi Gate, which looks in the direction of Daryaganj or ITO, that gate, and the other one, Lahori Gate, historically, 1639, when the Red Fort was built. This was the gate that was used by the royalty to travel towards Lahore, and that's why the name Lahori Gate. So the Prime Minister is then escorted through the Lahori Gate to the ramparts of the Red Fort, where he'll unfurl the tricolour. But before that, for the first time, you will have the entire Vande Mataram being sung from the ramparts of the Red Fort. subsequently the national anthem, and then the address of the Prime Minister. I want to quickly cut across and bring in my colleague Himanshu Mishra for more. Himanshu, the Prime Minister's 13th address from the ramparts of the Red Fort. Aur agar is baar baat kare, to sabse zyada focus suraksha par hai, kyunki khatra bhi desh ke dushmano ka kaafi hai, aantarik khatra bhi aur bahari khatra bhi.
6: बिल्कुल, लगातार जो कोऑर्डिनेशन चल रही थी, जो सेंट्रल एजेंसी से गौरव इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, उसी को ध्यान में रख करके इस बार सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं. आप सोचिए कि कुल 24,000 के आसपास गौरव गेस्ट हैं और उनकी सुरक्षा के लिए 12,000 के आसपास जवान इस पूरे इलाके में तैनात किए गए हैं. हम जहां पर मौजूद हैं, ये समझ लीजिए कि फाइनल बैरिकेडिंग है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपको 3 से 4 बैरिकेड सिक्योरिटी के पार करने होंगे. यहां तक मैक्सिमम वही गाड़ियां आ रही हैं जिनमें ज्यादातर स्टिकर लगे हुए हैं जो गेस्ट है. आप देखिए, ये जो गाड़ियां आप देख रही हैं, ये तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जिनके ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं, और कोई गाड़ी अगर यहां पर बिना स्टिकर के पहुंचती है तो उसको यहां पर डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये सीधा रास्ता लाल किले की तरफ पहुंच जाएगा. तो ये जो रोड है, इसके बाद यमुना नदी है. यमुना नदी को भी इस बार हमने देखा कि बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा गया. राउंड द क्लॉक वहां पर बोट से पेट्रोलिंग हो रही थी, और रोड और यमुना के बीच का जो खाली इलाका है उसको भी इस बार पूरी तरीके से नजर में रखा गया है. सिर्फ यहां पर मैं खड़ा हूं, कुछ 100 मीटर पे लाल किला है, और वहां पर आप सोचिए कि 1,000 के आसपास कैमरे इस पूरे इलाके में लगाए गए हैं, जिसमें से ज्यादातर कैमरे वो हैं जो FRC सिस्टम यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस है. अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का शख्स इस बैरिकेड को पार करता है, CCTV में जैसे ही उसका चेहरा दिखेगा, कंट्रोल रूम में जो बैठा शख्स है, पूरा बायोडाटा उसके सामने, उसके पूरी क्राइम हिस्ट्री उसके सामने आ जाएगी, उसे पकड़ लिया जाएगा. तो ये देखिए, आप सामने जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, जो तमाम गेस्ट हैं, जो विदेशी मेहमान भी आज पहुंचने हैं, वो सभी लोग अब एक एक करके पहुंच रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे वक्त होता जा रहा है. 7 बजे के बाद इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, यानी गेस्ट भी हैं उनके पास अगले तकरीबन 35 से 40 मिनट है जब तक तमाम गेस्ट को ये इस रास्ते से एंट्री दी जा रही है. अब आप बात करें कि इतनी छोटी चीजों का भी गौरव इस बार ध्यान रखा गया है, इनपुट को देखते हुए जो सिक्योरिटी इनपुट सेंट्रल एजेंसी से मिली थी कि काई कैचर्स को पूरी तैयारी के साथ तैनात किया गया है. यानी ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम तो हमेशा मौजूद रहता ही है गौरव, लेकिन इस बार काइट कैचर्स को पूरी ट्रेनिंग के साथ लगाया गया है कि इस पूरे इलाके में अगर एक पतंग भी दिख जाए तो उसको तुरंत कैसे पकड़ करके उसको साइट कर देना है. तो उसके लिए बकायदा टीम्स लगाई गई हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है. तो ये जो तस्वीरें हैं जहां पर मैं मौजूद हूं, ये अपने आप में बयान करने के लिए काफी हैं कि क्या सिक्योरिटी की तैयारियां हैं. अब आप इस बैरिकेड से पहले का आप क्या देखिए, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, ये फाइनल बैरिकेड है, और इसके पहले का तमाम क्योस आप देखेंगे अगर, और वहीं अगर इस बैरिकेड के बाद की तस्वीर मैं दिखाऊं तो साफ समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर है. आप देखिए, ये बैरिकेड के पहले ये आखिरी फिल्टर हम कह सकते हैं, तमाम जो गाड़ियां हैं उनको यहां से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है. सिर्फ जो मेहमान है उनकी गाड़ियां आप देखिए एक एक करके अंदर की ओर जा रही है. दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो गेस्ट के अलावा पूरी तरीके से शांति है. पूरे जिस तरीके से आप देखेंगे आगे सिक्योरिटी के जवान किस तरीके से इस पूरे इलाके में आगे तैनात किए गए हैं, तो इस बार जो
0: तरह की बात करते हैं हिमांशु, तो इस समय खतरा किस तरह का है जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई और लाल किले पर जो आतंकवादी हमला हुआ था कुछ वर्षों पहले, उसमें AQIS अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जिक्र किया गया था. तो वो जो भारत एक बहुत बड़ी उड़ान भर रहा है, यू नो वी टॉक अबाउट विकसित भारत जर्नी 2047, बट लुक एट वॉट आसिम मुनीर पाकिस्तान्स फील्ड मार्शल सेज, इंडिया इज लाइक दैट शाइनिंग मर्सिडीज, इंडिया इज लाइक दैट शाइनिंग कार, एंड पाकिस्तान इज लाइक दैट डंप ट्रक, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान बेस्ड रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर ट्राइज टू डू. दे वांट टू हिट आवर शाइनी न्यू मर्सिडीज और अ फास्ट मूविंग कार विद देयर डंप ट्रक. ये सबसे बड़ा खतरा यही है, बाहरी भी और उन्हीं के पलझाए लोग आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है मानशु?
6: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है यही है, क्योंकि जो जो इनपुट्स मिले हैं, जो इनपुट्स को गैदर करके जो काम किया गया है, तो आप देखिए जो ये शहजाद भट्टी की अगर हम बात करें, तो पिछले जब देखा गया कि आईएसआई ने उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया है, आप देखिए हमने देख कि दिल्ली में मेहरौली में एक एनकाउंटर होता है कुछ समय पहले, और उस एनकाउंटर में 8 लोग पकड़े जाते हैं, 8ों जो थे उनका कोई खास क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, वो नशे की पुड़िया की तलाश में घूम रहे थे, दरअसल उनको अंजाम देना था।
0: And once again, jammers are at play. बिल्कुल बिल्कुल, आप हमको विस्तार से बता रहे थे कि किस तरह देश की सुरक्षा पर खतरा है. While we talk about the country's economic development, while we talk about the country making great progress in the field of science and technology, and you also have elements who try to derail India's growth story. But what is it that we've seen the Prime Minister focus on in the past years? So 2025, last year's address, what were the key focus points for Prime Minister Narendra Modi? Semiconductor, from lost decade to mission mode. Nuclear energy capacity to grow tenfold by 2047. GST reforms, reform task force for Bharat. 1 lakh crore Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. High-powered demography mission. Energy independence, made in India jet engines, and that made in India jet engines, as we get Shivani Sharma back into this conversation, we've just looking at a private entity in our country, Reliance and Rolls-Royce, both simultaneously talking about manufacturing a fighter jet engine, a made in India fighter jet engine. They are coming together to work on that project. And that would take India altogether in a different league. Very few countries can make a fighter jet engine, and especially the kind of fighter jet engines we are looking for future warfare. 110 kilonewton thrust power engines, India's own Kaveri engine, that's also now moving forward once again. It's a beautiful journey that we talk about. A quick break. Back with lots more. Stay with us.

0: सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर।
1: गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी भारत के निरीक्षण का अनुरोध।
2: रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर टू कैरी आउट द गार्ड ऑफ ऑनर सेइंग द ट्राई सर्विसेज एंड दिल्ली पुलिस कंटिंजेंट्स द गार्ड इज रेडी फॉर इंस्पेक्शन। The contingent comprises one officer and 24 personnel each from the Army, the Navy and the Air Force. The Indian Army, as you see in these images, that's the coordinating service

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए।
जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा,
मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े। पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने
आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसी ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है, और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा था। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है।
और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए

हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा।

आ गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पे तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है, और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई। और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है, और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है, और इसलिए 2014 के बाद
दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन भाई ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है, और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्र तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसे मैं चाहूंगा कि हम इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे
और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, खूब फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए,
हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है, हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे, ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की इन सात शक्तियां, सप्त शक्तियां, उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को
जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1,00,000 करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों ने
नौजवानों को नई ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है, देखिए नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ...2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है,
लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक अभियान चलने वाला है।
मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ
नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली है वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। सर, मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए, और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है, और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं। वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए।
मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका एक या दो घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये एक दो घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: Independence Day, and welcome to the special broadcast. I'm Maria Shakir. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. And the ambition was unmistakable. He called it Saptdhara, or seven streams of strength. We'll try and decode that and what have been the multiple call of action in that speech, which was delivered just a few minutes ago. But first up, the headlines. Prime Minister Modi addresses nation from ramparts of Red Fort in New Delhi on 80th Independence Day, unveils a seven-point Saptdhara reform framework to accelerate India's journey towards becoming a Viksit Bharat by 2047, says previously no-go areas have changed now to go-ahead areas on India's coastal waters.
1: Shakti ki Saptdhara ka aavahan karta hu. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्तधारा के सामर्थ्य से शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई नई गति देंगे.
0: Prime Minister Modi emphasizes on cost, quality and scale as core pillars for Indian manufacturing sector during his speech, says India must build complete value chains from design to finished product to compete globally. The Prime Minister announces new initiative to provide free online coaching to young people. He says that government is working towards creating a network through which young people could access online coaching without having to pay for it.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
0: Prime Minister Modi urges all political parties to work towards ensuring 33% representation for women in state legislative assemblies and the Lok Sabha. He says women's leadership is essential for shaping the country's policies.
1: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए. लेकिन मेरी माता और बहनों को हक दीजिए.
0: तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय होइस्ट्स नेशनल फ्लैग एट स्टेट सेक्रेटेरिएट इन चेन्नई मार्किंग 80th इंडिपेंडेंस डे. एम्फसाइजेस यूनिटी बियॉन्ड कास्ट एंड रिलीजन, प्रॉमिसिंग एन एडमिनिस्ट्रेशन फ्री ऑफ करप्शन.

0: भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तो हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, खूब फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए।
1: Big announcements made by Prime Minister Narendra Modi today. Now let's take a look at what these big announcements that Prime Minister made today are. AI youth skilling. Prime Minister said that 1 crore youth will be trained in AI over the next year via nationwide mission mode. Then he spoke about free online coaching. The emphasis was that free online coaching will be provided to youth preparing for various examinations. He spoke about modernized training and enhanced capabilities to address evolving security needs. Nationwide campaign targeting children between 5 and 15 years across villages and cities. This will be done for a sports talent hunt. Prime Minister also spoke about 7 to 8 new production plants to operationalize within 1 to 2 years. This is with regards to semiconductors. In the space of nuclear energy, Prime Minister said that target of 100 gigawatt capacity by 2047 and 5 new reactors will become operational within 6 to 7 years. Let me bring in the guests who are joining me now. Javed Ansari, political analyst, is with us. Sajjan Kumar, political analyst, is with us. We have Congress spokesperson, Dr. Pooja Tripathi. I'm going to begin with you, Sajjan. It's an important speech, one that is being seen as in getting India ready for the next leap. What, according to you, is the big takeaway?
2: A couple of takeaways. One, the reference that 21st century, the first quarter is over and the second quarter is crucial. And therein, Prime Minister gave a reference of the policy landscape of India, and that has to be the reference for the new policy reforms, and youths are going to be the anchor. So therein, he brought the vision of Develop India, Vision Viksit Bharat, youth being both the anchor as well as the beneficiary.
1: And the driver.
2: And the driver, exactly. And three, when he talked about the Saptadhara, the power in 7 sectors from agriculture, manufacturing, innovation, startup, green energy, to national security, everything. So that way, I do see that the reference of 10 years, because Prime Minister contrasted his speech multiple times of policy paradigm since 2014 and before that, I think he was establishing the reference of 12 years, his own achievement, as a marker in the political context and the new generation, which will take his reference, right? So that being a positive reference, that was the attempt by Prime Minister, but he was not using it as a complacency that things have been achieved, but rather when he said that the next quarter of 21st century is crucial to realize Vision Viksit Bharat. And therein he said that in this reference, we need to go both speed and scale, a new wave of policy reforms, wherein youth being the anchor, driver, and the beneficiary.
1: Yes.
2: That's the biggest takeaway to me.
1: cost quality scale is what the Prime Minister has spoken about. Let me bring in Javed Ansari. Javed Ansari, what according to you is going to be the takeaway of this 12th speech, I believe, of the Prime Minister, Prime Minister Narendra Modi, from the ramparts of Red Fort?
3: Maria, I have over the years seen Prime Ministers, Mr. Narendra Modi and those before him, make lofty pronouncements from the ramparts of the Red Fort. It might be a good idea going forward to do a rain check, to do a rain check on how many of these laudable schemes that are announced have been implemented. The Prime Minister spoke of, if I'm not mistaken, a few years back, he has spoken of creating 2 crore jobs for the youth. How many such jobs have been created and provided? And if indeed that was the case, even if that was a partial success, much of the discontent that we now witness and experience amongst India's youth would not be there. The Prime Minister, in the course of his speech, also spoke about women's reservation. This women's reservation bill has already been passed by both houses of parliament. What is preventing Prime Minister Mr. Narendra Modi and his government from implementing it? And what is preventing him from at least implementing it in his own party? Give 50%, reserve 50% tickets for women in, you know, in state assemblies and parliament. Let him walk the talk. Let him set the example and make, and that will ensure that everybody else follows. Barring one party which currently is facing rough weather, none of the political parties have implemented this, have given fair representation to women. So it's one thing. The point I'm making is it's one thing to make these pious pronouncements. It's quite another to implement them. And we need to do a rain check on how much of this has been a success and how much of it this just remains on paper.
1: Okay. Dr. Pooja Tripathi, come in now.
4: You know, Jai Hind, and a very happy Independence Day to all your viewers and everybody listening to it. You know, Maria, what is India, we ask, and what is an independence? Independence was not just a social contract. It was an, hope given to a country where your Indians stopped being subjects and started being an equal citizenry. And that's where we ask, you know, the Prime Minister's speech today, I listened to the Prime Minister's speech, it was high on aspirations from 2027, shifting to goalpost to 2047, again shifting the goalpost. And that's where he's asked, but did it address the anxieties that is driving the country today? Did it address? And when I talk about, India, when I talk about India, India is driven by courage. India is driven by sacrifice. India is driven by, hope. And hope is where I question. You know, you can have all the grandstanding announcements of Saptadhara and everything. But the moment you bring in the word like Dimagi Naxals, this was a day, this was a shared Independence Day, shared by you, shared by everyone, shared by 140 crore Indians. And you cannot label somebody as Dimagi or Naxals on a day that is, very high on hope and resilience.
1: Yes, I'm going to play that soundbite and in what context it was said. But yes, please go ahead, Dr. Pooja Tripathi, finish your point.
4: We always come and appreciate Prime Minister Modi. Just now, Javed sir was saying then, why can't Independence Day be about course correction? Why can't you tell us that the promises that were promised in 2014, 15, 19, 20, 21, how many of them have been achieved? Why to always create grand acronyms? And I want to bring in here the acronyms that have been created by Prime Minister Modi. In 2014, he named 3 P's, democracy, demography and demand. In 2014, it was Team India. Together, everyone achieves more. In 2019, it was 3C, clear intent, clear vision, and clear execution. 2021, it was 3G, good intent, good governance. And through 2023, it was five plans. And 2023, it was 3I, infrastructure, investment, innovation. And today, it's Saptadhara. The point is, a country that is facing extreme joblessness, what does a freedom mean to a citizen, to a young graduate who is seeing diminishing opportunities, who is facing incessant paper leaks? What does freedom mean to a large amount of citizen political freedom when their citizenship is denied? What does freedom mean to a farmer from Madhya Pradesh who is protesting on the eve of Independence Day for MSP for Moong, and what this freedom means to women of the country when a women MP, you know, had to post on a Twitter that some goons are actually raising Jai Shri Ram over his outside her own circuit house in her own constituency. And
1: yes,
4: of course, I
1: we have seen that. We have seen that, Pooja Tripathi. I'm going to play that soundbite of that part of the speech that Prime Minister spoke about that is being that Pooja Tripathi spoke about, and then I'll bring in Sajjan. Go ahead.
0: In 2014, you gave us a chance. That day, we had a संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे. और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है. पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों. लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है. इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है. वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे. सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था. मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है. लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है. हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
1: ब्रिंग इन सज्जन ऑन दैट नोट. सज्जन, यू नो, हियर इज द प्राइम मिनिस्टर हू हैज स्पोकन अबाउट the scale, he has spoken about the quality, and he has also spoken about futuristic vision of India. And then there is this point that has been made about the larger mindset. It's about the mindset that he is speaking about when he spoke about Dimagi Naxal, that there is a need to identify them as well, even as India has fought since 2014 a battle against Naxalism and has won it. I'm seeing online again, there is a lot of criticism which has started coming in, particularly with that phrase.
2: Maria, the criticism may make sense if you point this reference of Prime Minister from urban Naxal to Dimagi Naxals, the intellectual thought process, only when you juxtapose it to the BJP or BJP government at the center. But if Indian state is the reference, it makes sense, you know. So we have to differentiate between the government of the day. If you oppose government and if you are called a Naxal, that's problematic. Hmm. But there are people, and this is not just a BJP identification. This has been since UPA 2 days, Home Minister Chidambaram to other FCRA bill. During UPA 2 days was curtailing the funding, you know, to those NGOs and others who were accused of indulging in anti-India, not anti-government activities. We do know during UPA days also, Dr. Vinayak Sen to others who got bail from the Supreme Court but were allegedly involved in connection with the Naxalites. They were, once they got the bail, he was made a part of a government committee, an advisor. So when he is talking about Dimagi Naxal, A myopic view could be that anyone who opposes the BJP government, if he or she gets framed, that is problematic, that is politics. But we have a bona fide thing that there are intellectuals, there are people who are indulged in anti-India narrative, you know, in the name of larger normative ideas of human rights, environment, etc. And classrooms have been the arena of that, you know, ideological baptization, that's true, where, you know, anarchy, questioning the state, questioning the constitution is seen as revolutionary and bona fide trait, you know, therein it is the challenge to the Indian state. And in that reference, Dimagi Naxal is a bona fide category, and it doesn't start with Prime Minister Modi. He has just brought a term. No, it has been pursued during Congress days also.
1: Okay.
2: So, yes.
1: Okay, perhaps Javed Ansari would like to come in on this.
3: You know, Maria, traditionally when prime ministers address the nation from the ramparts of the Red Fort on 15th August, one always expects that that you will speak as the prime minister of the country, as the leader of the nation, and resist the temptation to speak as a leader of a political party. Prime Minister Modi somehow just cannot resist that temptation. Whether he's touring abroad, which he does very frequently, or from the Red Fort, one would have been much happier if he had refrained. There, he has enough and more opportunities to in the course of the various rallies that he addresses, in the course of his various engagements. He could have expounded on this term, but to use a solemn occasion as the Independence Day of the country, to use that opportunity with the bully pulpit that he enjoys by virtue of being prime minister, to being, partisan, leaves a sour taste in the mouth.
1: Okay. Sajjan, as Javed Ansari was pointing out, was this the right occasion?
2: No, I mean, I cannot say that, that was the right occasion, because usually on 15th August, the statesmanship is expected, wherein you refrain from pointing out anything that can be interpreted in a politically partisan manner. So to that extent, it is debatable. But all my humble point is that this Dimagi Naxal, Urban Naxal, the term may be new. But this phenomenon of identifying the challenges to India's, you know, policy security and national security is not a BJP phenomenon. It precedes BJP. You know, P. Chidambaram, as the Home Minister, we do know his take, be it against the Naxalites, Green Corridor, Red Corridor, special powers to the paramilitary forces, and the restrictions of the FRCA, that is to restrict the funding to these forces who were being seen as
1: FCRA.
2: Going against the state narrative, against the state narrative. So that is called, and I remember that time, many of the Congress statists used to use the term that they are the overground of the underground. That was the term. Now you are calling them Dimagi Naxal. So I do reckon that perhaps there could have been some restraint. But when it is, the reference is the Indian state,
1: it is the reference of the Indian state.
2: Becomes secondary. Exactly.
1: Okay.
2: Exactly.
1: Okay, it's the reference to the Indian state. I'm going to come back to all the guests, but let's play some more, parts of that speech that the Prime Minister has delivered, and then I come back to the guests.
0: Meri Saptadhara ki teesri shakti hai, technology aur innovation. Mere pyare deshvasiyo, aaj जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है, हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है, अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है, भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए. सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति. ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए. हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा. हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति. और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है. मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है. इसके बिना कोई चारा नहीं है. विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है. हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी. साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है. वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं. हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है. हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है. हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए. भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है. ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं.
1: On that note, we are slipping into a short break. Lots more news and updates on the other side.

0: From the ramparts of the Red Fort, the Prime Minister has spoken about his vision and future of India, made several key policy announcements as well. He has spoken about manufacturing power. He has spoken about technology and innovation, green and blue economy, and emphasized that there should not be any compromise on quality. The emphasis has been that India's scale of ambition has to shift. How 50 companies have to be in Fortune 500, an Indian bank among the top global banks, an Indian pharma company among the world's top five, an Indian law rating agency achieving global leadership. He has spoken about all those aspects and also the politics which has begun already on the comment which was made. But let me go back to the two analysts that we have on the show. And this was bound to happen, and it has started already. The Congress Party, of course, emphasizing on what they say should not have been spoken from Red Fort. But let me bring in Sajjan and speak specifically about cooperative federalism and reforms that Prime Minister spoke about. You know, because increasingly we are seeing that the states and the center are aligning a lot, much more than what we saw perhaps even a year ago. That's also because of the change of government which has happened in some states, particularly Bengal, I would say, which now has a BJP government. Even now, Tamil Nadu government, Vijay, is showing inclination of working with the center, even as they have gone ahead and passed that resolution against NEET and also against delimitation.
1: Yes, Maria, cooperative federalism that he's talked about, one is the economic angle. He talked about that state government should take maximum benefit of the opportunity in lieu of the FTAs, which is now at present with more than 40 countries. But besides that, also, a bit on the question of delimitation or the taxation, there has been a sort of a dialogue and working relationship wherein the central government is listening to the state sensibilities, particularly on delimitation. The state southern sensibilities that the percentage of the seats, neither the current numbers will go down nor the percentage will go down. So this is one wherein you find this bit of cooperative federalism. But besides that, you know, we are talking about statesman spirit. It was a pleasant surprise to me that I think first time I had the reference of Pandit Nehru when he talked about dreams of our great freedom fighters, wherein usually Pandit Nehru never found a mention. This time, you find that in lieu of all the great struggle, freedom fighters, Nehru also got a mention, and mention valid so. So that also shows that Prime Minister's, you know, statesmanship at least. I mean, while he is being accused of political partisanships and bringing politics along with policy, you also find those sparks wherein the greatest, betonoir of the current dispensation in ideology and in persona, Nehru is finding the reference. So that also shows that be it on policy, be it on financial situation, be it on issues like delimitation, you find that the government is trying to reach out to the state government, not just the BJP state government, but as you pointed out, it is with the Vijay in Tamil Nadu. I think DK Shivakumar also has a very good rapport with Prime Minister, personal rapport. So that way, using the dais of 15th August, from the rampart of Red Fort, giving a call for cooperative federalism, appealing to different segments of the society. On women reservation, he said that everyone should come and take credit, you know, but there has to be. So this appeal has to be taken in earnestly, even if there is a political angle. You know, every policy has a political takeaway. You know, a dispensation is beneficiary while the other may be at a loss. But trying to reach out in a language, not trying to be the sole, you know, credit-worthy person, not indulge in self-praise, you know, that itself is also an element of today's PM's address. While he gave the reference of his achievement of 12 years, he wanted to make the reference of 12 years as an encouraging reference compared to India before 2014. One can see a political, you know, self-praise. But the fact that he is also reaching out to other, the fact that he is also appealing to other and also praising none other than Prime Minister Nehru, because if we all know, you and we all have seen that from RSS to BJP, every, you know, freedom fighter, all the great leaders of India who fought for country, they will be mentioned except Nehru. I think it is for the first time that Prime Minister has used Pandit Nehru along with all the great leaders. And that to me is a point of departure.
0: Okay, there's a point of departure here. Did you also see that, Javed Ansari?
2: Maria, we have to be grateful for small mercies, thankful for small mercies. This is perhaps the first time that the reference to Mr. Jawaharlal Nehru, India's first prime minister, has not been critical. So we need to be grateful for small mercies. What should be customary is comes by way of an aside.
0: But Javed Ansari, there has been a departure from the past. I mean, if there are certain takeaways in Prime Minister Modi's speech today, then that will be also seen as a takeaway from what was seen in those 11 years to now.
2: Yes, so like I said, we need to be grateful for small mercies. I acknowledge that departure. Having said that, the Prime Minister spoke, and it's very nice. He underlined some very critical issues, self-reliance. We need to up production. We need to be Atmanirbhar. Yes, we need to be Atmanirbhar. Recent skirmishes with Pakistan have shown that in the defense sector, you know, Russia has been the biggest supplier of arms and ammunition for the longest time, and of oil. However, under U.S. pressure, we've had to scale that back. Now, we are dependent on Israel and on France. We've made a lot. There's been a lot of talk of producing our own fighter jets. But this Tejas project, and these are not my words. These are the words of the current Indian Air Force chief. He has said that their progress has been tardy, has been abysmally slow. You know, we still, our squadron strengths are way below what we require. That's because we haven't been able to produce quality and produce it in time. So a lot of distance needs to be covered. We need to be able to scale this up. Look at the energy sector. We are dependent on the Gulf. We were dependent on Russia. Now we are being arm twisted into buying oil from Venezuela, etc. We need to find a way. Ethanol, E20 is certainly not the way. If that is innovation, then that could come back to sting us.
0: Okay, so let's play more sound bites of the Prime Minister. And Javed Ansari and Sajjan Kumar, continue to be with us.
3: जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, खूब फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए

0: Good morning, viewers. Happy Independence Day. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi has laid out a blueprint for India's next decade. And the ambition was unmistakable. He called it Saptadhara, or seven streams of strength. The headlines first. Prime Minister Modi addresses nation from ramparts of Red Fort in New Delhi on 80th Independence Day, unveils a seven-point Saptadhara reform framework to accelerate India's journey towards becoming a Viksit Bharat by 2047, says previously no-go areas have now changed to go-ahead areas on India's coastal waters.
1: Shakti ki Saptadhara ka aavahan karta hu. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्तधारा के सामर्थ्य से शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई नई गति देंगे.
0: Prime Minister emphasizes on cost, quality and scale as core pillars for Indian manufacturing sector during his 80th Independence Day address, says India must build complete value chains from design to finished product to compete globally. Prime Minister announces new initiative to provide free online coaching to young people. He says government is working towards creating a network through which young people could access online coaching without having to pay for it.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले
0: हैं. एंड प्राइम मिनिस्टर हैज अर्ज्ड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू वर्क टुवर्ड्स एंश्योरिंग 33% रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लोकसभा. ही सेज वुमेन्स लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर शेपिंग द कंट्रीज पॉलिसीज.
1: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए.
0: तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय होइस्ट्स नेशनल फ्लैग एट स्टेट सेक्रेटेरिएट इन चेन्नई मार्किंग 80th इंडिपेंडेंस डे. ही हैज एम्फसाइज्ड ऑन यूनिटी बियॉन्ड कास्ट एंड रिलीजन, प्रॉमिसिंग एन एडमिनिस्ट्रेशन फ्री ऑफ करप्शन. The Prime Minister's message to industry was blunt. Quality was non-negotiable. Trust in Indian products would be built or broken on it. And the benchmarks he set were bold. 50 Indian companies in the Fortune 500, an Indian bank among the world's biggest, an Indian pharma major in the global top 5, Indian law ratings, consulting and tech firms competing and winning on the world stage. Beyond the economy, three appeals stood out: a call to families to join, a drive against drugs,

0: India deliver on it? First up, let's listen in to what the Prime Minister said.
1: जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, खूब फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। तो हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा।
0: एंड जॉइनिंग मी नाउ गुरु प्रकाश पासवान, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, आदिल सिंह बोपराय representing the Congress. We have Javed Ansari, political analyst. Guru, I'm going to begin with you. The Congress has come out all guns blazing and their conclusion is that the Prime Minister should not have spoken about the phrase that he used about, the mindset should not have been spoken from the ramparts of the Red Fort.
2: Maria, a very happy independence to you and your viewers. It is a day I think all of us are proud of. Honorable Prime Minister, while addressing the people of the country, has made a categorical remark. And we have to be very conscious of the fact that anything that he has committed to the nation from the ramparts of Red Fort, if you look at the past, Swachh Bharat Abhiyan completely achieved. Abrogation of Article 370 completely achieved. Ram Temple completely achieved. Viksit Bharat Sankalp, we are on the way. So we have to understand the Vande Bharat, I think it is a first exercise, first effort, first attempt in the direction of decolonization of Indian mind as well. whatever Congress party has done, I think today is not the day of politics, Maria. Let me be very clear and very categorical. It is the day to celebrate our independence.

जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है।

0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपने को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: ये राहुल गांधी जी को हार का जो डेस्परेशन है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है। और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है, और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है। प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुनाव चुने हुए प्रधानमंत्री है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग?
1: राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते।
2: A superstar who entered politics with a promise of change. What is his vision for Tamil Nadu? What will define his leadership? And what lies ahead for the state? Catch CM Vijay for the first time live at the India Today Roundtable. Vijay, 100 days in power. India Today Roundtable, Tamil Nadu, 17th August. All through the day, only on India Today.

0: Very good afternoon, viewers. You're watching India Today with me, Sriya Kundu. And as we begin the bulletin, let's first begin with wishing all of you a very happy 80th Independence Day. We will be taking you through all the top stories of this very hour. Before that, let's quickly take a glance at the headlines first. Prime Minister Modi warns against intellectual Naxals or Dimagi Naxals, alleges they pose a threat to society by influencing policies and creating unrest, urges citizens to identify and isolate them. Congress calls it sure sign of desperation.
1: Ye Dimagi Naxal mauke ki talash mein hai, hinsa arajakta ke wo raaste khoj rahe hain, samaj ko galat raah par घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं।
0: Prime Minister addresses the nation from the ramparts of Red Fort in New Delhi on 80th Independence Day, unveils a 7-point Saptadhara reform framework to accelerate India's journey towards becoming a Viksit Bharat by 2047, says previously no-go areas have been changed to go-ahead areas on India's coastal waters.
1: शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति।
0: Prime Minister Modi emphasizes cost, quality and scale as core pillars for Indian manufacturing sector during his 80th Independence Day address, says India must build complete value chains from design to finished product to compare globally. Prime Minister announces new initiative to provide free online coaching to young people, says government working towards creating a network through which young people could access online coaching without having to pay for it.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
0: Prime Minister Modi urges all political parties to work towards ensuring 33% representation for women in state legislative assemblies and the Lok Sabha, says women's leadership is essential for shaping the country's policies.
1: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए.
0: Meanwhile, RSS chief Mohan Bhagwat's big message on the opposition says debate and protests are a part of democracy, says youth can become asset if nurtured well, also says can follow path of Ambedkar's view on democratic responsibility.
2: प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है. हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्य हो इतना बल लगाना पड़ता है.
0: तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय होइस्ट्स द नेशनल फ्लैग एट स्टेट सेक्रेटेरिएट इन चेन्नई, मार्किंग 80th इंडिपेंडेंस डे, एम्फसाइजेस यूनिटी बियॉन्ड कास्ट एंड रिलीजन, प्रॉमिसिंग एन एडमिनिस्ट्रेशन फ्री ऑफ करप्शन.

0: कांग्रेस साहब हो गए वहाँ पर, ये चाहते हैं उसी प्रकार का यहाँ पर परिश्रमन हम अपने हाथ में लें, ऐसा परिश्रमन करें कि इनको को रोक नहीं सके। रशिया के अंदर, चाइना में, उत्तर कोरिया में 800-900 लोग होते हैं वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, और एक पार्टी का राज होता है, खाली नाम मात्र का चुनाव होता है वहाँ। वो चाहे हिंदुस्तान वो स्थिति में आए, वो कांग्रेस राहुल गांधी के खड़गे साहब के नेतृत्व में किसी कीमत पर नहीं आने देगी, ये मैं कह सकता हूँ।
1: Well, as we speak of the Congress responding to it, what exactly was the appeal that was made by the Prime Minister? Let's take you through those details first. Prime Minister Modi's big appeal to the opposition over the women's quota bill. Prime Minister Modi, during his Independence Day speech, urged opposition parties to support the swift implementation of the women's quota in Parliament and state assemblies. Prime Minister said 33% reservation for women is the call of the hour. He further said that the women's quota bill is a victim of political vendetta and appealed to leaders across party lines to support the bill in the House. Prime Minister also hailed women's role in nation building. Prime Minister said that women are playing a major role as elected representatives in panchayats, municipalities, municipal corporations, providing capable leadership in solving local issues. Now, the Congress has hit back meanwhile at Prime Minister Modi, saying that he should remember that women's reservation was introduced through the 73rd and 74th constitutional amendments passed in 1993, and that Rajiv Gandhi should be credited for it. He added that the government should implement the amendments within the current strength of the Lok Sabha as well.
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए, और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया था। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है, और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं, और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा हम चाहते हैं कि वो

आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्य हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्य वेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है।
1: Sorry.

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
3: So sorry.

0: First time the Prime Minister has used the word Naxal term to directly or indirectly even target the opposition. In 2022, while speaking in the upper house of the Parliament, Rajya Sabha, Prime Minister had claimed that urban Naxals had taken over the Congress vision. And that is why this time it's not about urban Naxals as much as Dimagi Naxals, or loosely put it, intellectual Naxals.
1: 2014 mein आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
2: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं पाई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
0: There were several other mentions that were made by Prime Minister Modi. Just in case you missed, I want to take you through what he said on the women's quota bill. Prime Minister Modi, during the Independence Day address from the Red Fort, urged the opposition parties to support swift implementation of the women's quota in the parliament and state assemblies. Prime Minister added, 33% reservation for women is call of the hour, adding that women's quota bill is a victim of political vendetta, and appealed to leaders across the party lines to support the bill. Prime Minister hailed the women's role in nation building, adding, women are playing a major role as elected representatives, whether it's panchayats, municipalities and municipal corporations, providing capable leadership and solving even local issues. Why shouldn't it then extend to the parliament? Congress, though, has hit back at PM Modi, saying he should remember that women's reservation bill was introduced through 73rd and 74th constitutional amendment passed in 1993. Rajiv Gandhi should be credited for it. He added that the government should implement the amendments within the current strength of the Lok Sabha.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया था। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
3: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बाबा यही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे। आसाम में लिया था इन्होंने, कांग्रेस साफ हो गई वहां पर, ये चाहते हैं उसी प्रकार का यहाँ पर परिसमन हम अपने हाथ में लें, ऐसा परिसमन करें कि इनको कोई रोक नहीं सके। जैसे रशिया के अंदर, चाइना में, उत्तर कोरिया में 800-900 लोग होते हैं वहां पार्लियामेंट के अंदर, और एक पार्टी का राज होता है, खाली नाम मात्र का चुनाव होता है वहां। वो चाहे हिंदुस्तान वो स्थिति में आए, वो कांग्रेस राहुल गांधी के खड़गे साहब के नेतृत्व में किसी कीमत पर नहीं आने देगी, ये मैं कह सकता हूँ।
0: If there was one word that we've heard in the past few months, it's been the Gen Z or Indian youth. Prime Minister Modi, in fact, hailing the Indian youth during the Independence Day address and addressing the nation, adding that youth and women are driving India's Vikas Yatra. Youth will turn dreams into reality. Prime Minister further adding that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas and that youth will lead us toward the Viksit Bharat. That's, remember, been a vision for the Modi government. Prime Minister Modi also announcing several key schemes and plans for the youth. That 1 lakh crore rupees fund has been set aside for youth of the country. PM announcing that 1 crore youth will get AI skill development training in a year. Prime Minister also announcing free online coaching for aspirants preparing for competitive exams to ease the financial burden on their families. Prime Minister also set an ambitious target for Indian sport, saying the country should aim to participate in every sporting event at the 2036 Olympics, announcing a nationwide talent identification program aimed at identifying especially children who have a sporting potential and to provide them with access to quality training, facilities and support as India builds toward the Olympic ambitions.
1: मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
0: Through the evening, we'll continue to bring you special programs and what Prime Minister Modi has said in detail. Stay tuned. Hope you're enjoying Independence Day weekend. Thank you for watching India Today. I'm wrapping up this bulletin for you.

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही, वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।

आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, खूब फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महत्व हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते। मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग, एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले 1 दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है।
संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल और पता नहीं भविष्य वेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 325-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में,
और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 325 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया था। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए,
आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माता और बहनों को हक दीजिए। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।

आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

0: AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
1: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
2: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
3: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए. दिखता है, सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है. अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आज़ादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है.
4: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है.
5: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा. पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा. पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई. यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे. सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो.
6: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए. सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे. बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे. सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है. उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.
0: More breaking news coming in. Congress goes on the offensive against the BJP after it accused Sonia Gandhi of insulting Vande Mataram. Congress party has sent a legal notice to BJP leader Amit Malviya for falsely portraying the video as disrespect to the national anthem. Retraction and unconditional apology that has been demanded from the Bharatiya Janata Party over the allegations made and the statement to say that the Congress did not respect the national song Vande Mataram. Congress now going all out on an offensive against the BJP and has also sent a legal notice to that effect. Where the BJP accused Sonia Gandhi of insulting Vande Mataram during the Independence Day event and not standing in respect, rather conversations that were happening while the national song was playing. Congress party has now sent a legal notice to BJP leader Amit Malviya for falsely portraying the video as disrespect to the national anthem, retraction and unconditional apology that has been demanded as part of this notice that has been sent. Take a look at that entire sequence on the right of your screens.

0: position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है।
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
0: मोदी ऑल्सो डिटेल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड सीमलेस कनेक्टिविटी।
1: ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा।
0: Prime Minister also emphasized on strengthening domestic defense manufacturing and reduce its dependence on defense imports.
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी।
0: Prime Minister Modi also pointed out that innovation in clean energy technologies would be essential for meeting future energy requirements.
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं।
0: Prime Minister Modi also mentioned that India's soft power was the seventh dhara or the seventh pillar to realize Viksit Bharat vision. As Prime Minister Modi lays down the roadmap for Viksit Bharat, India has already embarked on the journey to become a developed nation. Bureau Report, India Today.
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर।
0: Prime Minister Modi's big Yuva and Mahila outreach from the ramparts of Red Fort, and it came during Prime Minister Modi's Independence Day speech.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है, विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
0: Prime Minister Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है, विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
0: He announced free online coaching for various competitive examinations, said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
1: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं बेटे हैं उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore young people.
1: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: Women's reservation also echoed from the ramparts of the Red Fort. In a special appeal, Prime Minister Modi urged the opposition to support the bill and give women the rights they deserve.
1: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: The Congress hit back at Prime Minister Modi.
3: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर।
0: The two announcements put both education access and future employability at the center of the government's Independence Day message. Bureau Report, India Today.
2: Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Eka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendra Nath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
4: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
5: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया। यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है। यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
6: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिए कि हम कुछ नहीं खाएंगे मेरा जो भी हो, लेकिन अब वो अंतिम समय मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक कर रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था तो उनको जाने नहीं दिया गया।
7: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो सीएस साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक, अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर क्यों रखे हैं? सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से, अगर यहाँ पे आप इलाज करते इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं, कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं, तो ये सर ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
8: नहीं, अभी स्थिति है लुक लाइट काफ़ी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं, और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए, पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
2: But that is time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.

0: purely from the government's point of view, the business transaction was satisfactory. But from the parliamentarian point of view, and in the view of being the largest parliamentary democracy in the world, we did not debate, we did not discuss enough, especially in the Lok Sabha. In Rajya Sabha, the discussion was partial because entire ruling party, the NDA partners, they took part in the discussion, and some of the opposition parties also did take part in the discussion. But the main opposition party, Congress and Trinamool, and few of them, they didn't take part.
1: You know what happened before this session? You entered the monsoon session after historic Bengal victory. There were defections which had happened in TMC, in the Shiv Sena. Aam Aadmi Party MPs had also defected and joined the BJP. There was this confidence with which government entered the monsoon session. You were confident that you will pass delimitation bill. Pass karwa denge. Delimitation bill ka kya future hai? Pehle mera ye sawal hoga. Aur FCRA, wo to ek simple majority ke saath bill pass ho sakti thi. Lekin opposition had an upper hand in getting it sent to the JPC.
0: Nahin, sabse pehle to humne mahila arakshan aur delimitation ko monsoon session mein hi parit karenge. Humne kabhi nahi kaha. Kyunki ye samvaidhanik mamla hai aur samvidhan sanshodhan chahiye. जिसके लिए पर्याप्त संख्या और सदन के अंदर में एक माहौल होना चाहिए. आप वोटिंग जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसमें हाउस इन ऑर्डर और डिवीजन वोटिंग होते हैं, तो उसमें शोरगोल में आप संविधान संशोधन बिल पारित नहीं कर सकते हैं. और हमने कहा नहीं कि अभी हम तुरंत पारित करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास संख्या है. लेकिन संख्या होते हुए भी हमने जबरदस्ती नहीं किया. जैसे एफसीआरए का बिल के बारे में आपने जिक्र किया,
1: एफसीआरए. लेकिन सर एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी. संख्या की बात जो आप कर रहे हैं, यू हैव द नंबर्स टू गेट द डिलिमिटेशन पास्ड, विच इज एसेंशियली अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच रिक्वायर्स 2/3.
0: यस, बट वी डिड नॉट प्रेस फॉर इट बिकॉज वी थॉट लेट देयर बी मोर कंसल्टेशन विद इन द पार्टीज. तो हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया. देखिये, हम बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं. अपोजिशन कुछ भी कहे, उससे कोई हमारा छवि बदलने वाला नहीं है. हर बिल हमने जबरदस्ती पास नहीं कराया. बिल पारित होने से पहले हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल को बताया, समय आवंटन किया, और फिर हमने बिल को लिस्टिंग करके हाउस में रखा. कोई भी ऐसा एक घटना नहीं है जहां हम ऑपोजिशन को पूछे बगैर कोई भी बिल पारित किया हो. ऐसा कोई घटना नहीं हुई है. और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, कई ऑपोजिशन एमपीस मेरे पास निजी तौर पर आए और ये कहा कि कृपया राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और कुछ लोगों से बातचीत करके बिल को चर्चा कराइए, हम लोग बोलना चाहते हैं.
1: एफसीआरए पे
0: नहीं, कोई भी बिल. लेकिन वो सुनते ही नहीं है. मैं राहुल गांधी जी से बहुत लंबा चर्चा की, अखिलेश यादव जी से भी चर्चा की, और बाकी ओपोजिशन पार्टी के कई नेताओं से मेरा बातचीत बहुत अच्छी तरह से हुई. लेकिन उसका कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो सदन में चर्चा के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए. तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बिल पे चर्चा नहीं होने से ज्यादा नुकसान ओपोजिशन पार्टी का है, क्योंकि सरकार का मत तो ऑलरेडी हमने कैबिनेट में बिल पारित करते हैं, फिर कैबिनेट से क्लियर करने के बाद वो पार्लियामेंट में लेके आते हैं. तो सरकार का मत तो बहुत साफ है. और कुछ बिल्स को हमने स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में भी भेजे हैं. मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कहते हैं कि सेशन वॉश आउट हो गया, सेशन वॉश आउट नहीं हुआ. सेशन पूरी तरह से हमारे लिए कामयाबी रहा. 12 बिल्स पारित किए, एक बिल पर चर्चा हुई. जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन एग्जाम्स, जो पेपर लीक वगैरह होते हैं, उसके लिए बहुत कठोर कानून बनाया. उसका चर्चा लोकसभा राज्यसभा दोनों में हुए. हाँ, इतना बात जरूर है कि पेपर लीक को लेकर के इतना मजबूत कानून बनाया तो ओपोजिशन उस पर नहीं बोले, वो बाहर का इधर उधर राजनीति करने लगा. लेकिन चर्चा हुई.
1: लेकिन सर, इफ ऑपोजिशन वॉन्ट्स डिस्कशन ऑन सर्टन इम्पोर्टेंट इश्यूज विच

0: ऑल्सो इंक्लूड्स चंदा चोरी इन अयोध्या, उस पर चर्चा की जरूरत है।
1: देखिए मैं तो
0: फिर चंदा चोरी पर आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए डिस्कशन?
1: अरे एक बात यह साफ है कि एक समय में एक ही चर्चा होगा, तो हमने पेशकश किया कि छात्र का जो आंदोलन हुआ नीट पेपर एग्जाम का लीक होने से, तो वो बहुत गर्मागर्म विषय बना, तो हमने तैयार किया ना उसको, हमने कहा कि चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ ये बताओ कि गोली किसने चलाया। अरे जब गोली चला ही नहीं है तो फिर किसने चलाया का सवाल कहां से आता है? ये तो मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं, आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप भी काफी मैच्योर्ड है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि अगर गोली चलती है तो खून खराबा होगा। देश में कितना आंदोलन हुए हैं, तेलंगाना राज आंदोलन से लेकर के कई ऐसे आंदोलन हुए, कितने सौ सौ लोग गोली से मारे गए।
0: लेकिन
1: आप सुनिए, उसमें कोई भी रेजिग्नेशन तो नहीं हुआ, हमारा तो शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। पैलेट गन्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो जब मौका मिलने से तो गृहमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक कॉमन वाला बात बताता हूं जो हर एक आदमी समझते हैं। पैलेट गन्स तो हजारों में सौ सौ वो विस्फोट होते हैं, एक ही को कैसे लगा? पैलेट गन्स तो एक गोली नहीं होते हैं। और इतना बड़ा आंदोलन में आप बताइए,
0: थ्री पीपल हु केम ऑन रिकॉर्ड सर, दे आर टू ऑफ देम हैव पिटिशन्ड इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो।
1: तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे, हम तो इसमें अभी कुछ कहना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कश्मीर में कांग्रेस के दौरान में पैलेट गन्स इस्तेमाल किया गया, कई जगह में कांग्रेस के जमाने में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, यहां में कोई पैलेट गन से कोई मौत, जैसे कि मैंने कहा अगर वहां चार पांच हजार लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पैलेट गन्स चलेगा तो कितने लोगों को चोट लगेगा? तीन चार सौ लोग को चोट लगेगा।
0: नंबर ऑफ देम हुज इंजरीज हैव बीन रिपोर्टेड,
1: देखिए वो तो मैं इसलिए
0: कम ऑन रिकॉर्ड आल्सो टू टॉक अबाउट देयर इंजरीज।
1: आप बताइए कि कोई मौत नहीं हुआ, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, इस एजिटेशन में किसी का मौत नहीं हुआ, किसी का हाथ पांव तोड़ के कोई अस्पताल में सीरियसली इंजर्ड ऐसा तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब पुलिस ने कितना प्रोफेशनली मैनेज किया है। अब इसको तो थोड़ा तो आपको मानना पड़ेगा ना, सही बात है कि अगर 30-40 हजार लोग आता है एक जगह और जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसने के लिए करते हैं तो क्या पुलिस उसको रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे क्या?
0: बट व्हाट राहुल गांधी सेड हियर दैट ही वांटेड अ स्टेटमेंट फ्रॉम होम मिनिस्टर,
1: आप राहुल गांधी जी को विश्वास मत कीजिए, वो बिना सोचे बात करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते मैं उसको सम्मान करता हूं, मैं उसको इज्जत देता हूं, लेकिन बिना सोचे अगर बात करेगा तो उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए राहुल गांधी जी खुद ही बोला कि मैं जवाब नहीं सुनना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट दो। अरे स्टेटमेंट कैसे देंगे आप? स्टेटमेंट पे पूरा चर्चा होगा, पूरा उसमें सबका बात सुनेंगे, ऑपोजिशन वाला बोलेंगे और सरकार जवाब देंगे, तभी तो कंप्लीट होगा चर्चा का।
0: सो इट गॉट स्टक बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड ऑपोजिशन ऑन अ पर्टिकुलर रूल?
1: नहीं, स्टक नहीं है, कांग्रेस पार्टी माना ही नहीं है, हम तो स्टक नहीं ना, हम तो पेशकश किए चर्चा करेंगे।
0: बट सर होम मिनिस्टर अमित शाह एज द कांग्रेस इज सेइंग एंड ही ऑफर्ड ऑन 12th दैट ही विल सिट फ्रॉम दैट डे एट 3 PM,
1: ऑफर नहीं किया पहले
0: till
1: किया मैंने
0: 3 PM।
1: होम मिनिस्टर ने कब ऑफर किया? जब मैंने बार बार कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, मैंने सदन में भी कहा, बिजनेस एडवाइजरी में भी मैंने कमिटी को जानकारी दिया कि हम एजुकेशन जो स्टूडेंट्स का है चर्चा के लिए तैयार है। होम मिनिस्टर तो बाद में इसलिए लिखा पत्र स्पीकर को, इसलिए उसने वक्तव्य दिया कि वो मान ही नहीं रहा है। तो मैंने तो सरकार की ओर से मैंने कह दिया कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है और पूरी चर्चा डिटेल में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो घंटे बात करेंगे, देश को सुनना चाहिए ना, देश को जानकारी होना चाहिए। हम तो जवाबदेही सरकार है, हम तो चुने हुए सरकार है, तो लोगों को हमको जवाब देना होता है और चर्चा ही नहीं होने देते हैं, तो ये प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से शुरू होता है। कांग्रेस के एमपी लोग खुद कहते हैं कि चर्चा होते तो बहुत अच्छा था, उनको बोलने का मौका मिलते। कांग्रेस में भी कुछ एमपीज हैं तकिया पकड़ के वो नाराबाजी नहीं करते हैं, कुछ लोग को ही करवाते हैं।
0: बट मिस्टर रिजिजू, व्हेन द बीजेपी वाज इन ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट, डिसरप्शन वाज सीन एज लेजिटिमेट।
1: प्रोटेस्ट इज लेजिटिमेट, हु इज सेइंग

0: Justice of India is head of the Indian judiciary. His position has to be given due respect. Every institution will have to maintain its dignity. If few groups in any institution tries to take a course which is motivated or influenced by the ideology, then it will do lots of harms to the institution itself. If you don't have the capacity to listen to the person of the opposite view, then it's not good for the democracy. And when it comes to judiciary or the Supreme Court judges or anybody, I think we have to be extremely careful. I cannot comment on that incident because I have not really got information about
1: but
0: that in details.
1: Universities and campuses, spaces for raising concerns and protests.
0: That's what I'm saying. No? You should raise your concerns and all. How can you prevent somebody from coming to the
1: bar?
0: No, to the institution or anywhere. See, what I'm saying is, every institution will have lots of people with diverse background, different ideology. If you are not prepared to invite, or if you are there to prevent the entry of any person whom you don't like, the institution cannot run that way.
1: My last question to you is coming from what we have seen over the last few days on social media. A lot of people from Arunachal Pradesh have put out videos, and even Rahul Gandhi has now raised it. And his words are, and I'm quoting you him, Arunachal Pradesh mein kai jagahon par Chin ne hamari sena ko patrolling karne se rok diya hai. Ye behad chintajanak hai.
0: Rahul ji ko history ke baare mein pura gyan nahi hai, kyunki Arunachal Pradesh, jiska naam Nefa tha, aapko malum hai, main aapko 2 minute time leta hu isko samjhane mein. Arunachal Pradesh mein jo Tawang sector hai, wo Bharat ka saath 1951 mein jude. 1951 से पहले वो टैक्स देते थे तिब्बत में. 1959 में दलाई लामा जी तिब्बत छोड़ के आए, और चीन का प्रधानमंत्री चाओ इनलाई जब यहां आए तो उन्होंने बार बार कहा कि ये जो नेफा कहते हैं आप मैकमोहन लाइन से नीचे, ये आपका हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है, आप इसको रखिए. चाइना ने ही कहा, उस समय अरुणाचल का नाम नेफा थे, तो ये नेफा आपका है. उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया चीन ने अरुणाचल को, और बदले में ये कहा कि आप अक्सर चीन को क्लेम मत करो और हम नेफा को कुछ नहीं कहेंगे, मैकमोहन से आगे आपका ही है. जबकि 1914 में शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन लाइन को बाउंड्री बना दिया था, तो चाइना ने मान्यता दिया था उसको. उस समय साइन तो नहीं किया, लेकिन बाद में कहा कि ठीक है नेफा आपका टेरिटरी. लेकिन बाद में जब इंडिया ने कहा कि नहीं हम अक्सर चीन नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे करके चीन ने फिर पहले तवांग को क्लेम किया, फिर अरुणाचल को क्लेम करने लगा. 1972 में नेफा से ये अरुणाचल नाम रखा, फिर 1987 में फुल फ्लेज स्टेट बना. तो अरुणाचल में जो जगह अभी एलिगेशन लगा रहे, वो 1959 में असापिला रेंज में जो लोंगजू साइड में जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 में ऑक्यूपाई किया. 1962 में कोई एडिशनल बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, 1959 में ऑक्यूपाई किया. उसमें असम राइफल के हमारे कुछ जवान मारे गए. हमारे पास रास्ता नहीं था, कोई उसमें मेंटेनेंस करने का व्यवस्था भी नहीं था. बाद में असम राइफल के जगह में ITBP आए. इंडियन आर्मी तो है ही, लेकिन फ्रंट में ITBP रहते हैं. 2013 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी साहब ने कबूल किया है कि अरुणाचल साइड में और चाइना का बॉर्डर एरिया में भारत का नीति ठीक नहीं रहा, क्योंकि हमने ये माना कि वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए. अब चीन के डर की क्या है वो पॉलिसी, बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगा. लेकिन जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 और 1962 में किया,
1: जगह नहीं गया.
0: नया जो बात कर रहे हैं वो ऐसा है,
1: हाँ.
0: क्योंकि हमारा रास्ता नहीं था, भारत सरकार ने ही रास्ता नहीं बनाने का पॉलिसी बनाया, तो वहां पे जो ऊंचा ऊंचा जो पोस्ट है वहां पर चाइना ने पहले रास्ता बना लिया और उन्होंने पोस्ट बना लिया, और उसमें हमारे लोकल का कोई डिमार्केशन था नहीं, ग्रेजिंग करते थे हमारे जो एनिमल्स वगैरह, याक गाय वगैरह जो भी है वो ग्रेजिंग करने का, क्यों खाली मैदान है वहां, गांव तो होता नहीं है, गांव तो थोड़ा नीचे नीचे में है। तो जो अभी हमारा कुछ लोग अरुणाचल के कुछ लोकल लोग कह रहे हैं, वो उनका कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि जिस जगह में हम लोग पहले ग्रेजिंग करते थे वहां नहीं जा पा रहे, वहां चाइना ने इस्टैब्लिश किया है, पोस्ट बनाया, वो बात सही है, लेकिन वो सारा एरिया इसलिए चाइना ने ऑक्यूपाई किया क्योंकि इंडिया ने तो रास्ता बनाया नहीं, इंडिया का कोई एक्टिविटी था नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी काम जो है वो तो 2014-15 के बाद ही प्लानिंग करके अभी शुरू हो रहे हैं। ताक्सिंग जो जगह कह रहे हैं वो 2019 में ही रोड कनेक्ट हुआ, आप सोचो 1947 में आजादी प्राप्त हुआ और ताक्सिंग में रोड मोदी जी का समय में 2019 में कनेक्ट हुआ, ऐसे यहां गुंजी में भी देखिए 2019 में कनेक्ट हुआ। तो जब हमारा रास्ता ही नहीं था तो चाइना ने रास्ता बना लिया और उन्होंने कई जगह ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए हमारा लोगों का जो कंसर्न है सही है। लेकिन ये जो आप गूगल मैप देख करके बात मत कीजिए, गूगल मैप में तो आगे को ऐसे येलो लाइन खींच देता है या व्हाइट लाइन खींचेगा और ये बॉर्डर रख करके दिखा देगा, वो तो मालूम नहीं है। और हमारे लोग भी कुछ लोग तो बेचारे नहीं जानते हैं, मैं तो ब्लेम नहीं करता हूं, उसको मालूम नहीं, वो गूगल मैप देखते हैं और कहते हैं ओह ये तो इंडियन टेरिटरी है। अरे वो जो जगह जहां चाइना लोगों ने घर बनाया, जो गांव बसाया, बिल्डिंग बनाया,
1: okay.
0: वो 1959 में ओरदे okay. ले चुके हैं।
1: ऑलराइट, थैंक यू।
0: लेकिन हम एक इंच नया जमीन तो नहीं देने के लिए हम लोग पूरा हमारा फोर्स बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। हम लोग तो लेट से शुरू किया ना, चाइना तो पहले कर लिया।
1: ऑलराइट किरण रिजिजू, प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस।
0: थैंक यू।

0: scheduled to be conducted with 14 JPSCs. The government is ready to cancel them, and it is ready for the reforms. Reforms also, government had consented to constitute a high-level committee comprising of experts from IIT, ISM, IIM, and other premier institutions.
1: Right.
0: So the government has considered most of the demand, but where there is some technical issue or some legalities or certain degree of legitimacy, they cannot consider that demand. And that is why the agitation continues, and the students have threatened to intensify the agitation. They say that they had opted a peaceful way, they had opted the Gandhiwadi way, but now they will opt and they will resort to the Subhash Chandra Bose way also, and the Bhagat Singh way also.
1: All right, Satyajit, many thanks for getting us those details. Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi, demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Eka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendra Nath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
2: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
3: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया। यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है। यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
4: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं खाएंगे, मेरा जो भी हो। लेकिन अब वो अंतिम समय, मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक के रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था, तो उनको जाने नहीं दिया गया।
5: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो CS साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम हैं, तो ठीक। अगर आप सक्षम हैं तो आप पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर क्यों रखें? सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से। अगर यहाँ पे आप इलाज करते, इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं। कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं। तो ये सर, ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना

0: वहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
1: नहीं, अभी स्थिति है इलेक्ट्रोलाइट काफी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है। उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं।

0: कोशिश कर रही थी। जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है। अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
1: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
2: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा और पूरा वर्षन गाया गया, क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
3: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे। बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे। सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
4: And while during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
5: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
4: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
6: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
5: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
6: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
5: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
6: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
7: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajnitik virodhiyon ko lekar. बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
6: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
4: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined seven streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaktidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the seven streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है हमें वहां पहुंचना है हमें उस जगह को हाथ लगाना है
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: हमें इनोवेशन का हब बनना है हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज उसको भी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना है Made in India 6G, हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
0: Modi also detailed the importance of development and seamless connectivity.
1: यह गति शक्ति देश के अंदर seamless fast connectivity पर हमें बल देना होगा। शहरों को high speed rail से हमें जोड़ना होगा। Modern highways चाहिए, inland waterways चाहिए, airports चाहिए। हमें हमारे ports को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा
0: प्राइम मिनिस्टर आल्सो एम्फसाइज्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन डिफेंस इंपोर्ट्स
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो पॉइंटेड आउट दैट इनोवेशन इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज वुड बी एसेंशियल फॉर मीटिंग फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है हमें दुनिया में दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो मेंशन दैट इंडिया सॉफ्ट पावर वाज द सेवेंथ धारा और द सेवेंथ पिलर टू रियलाइज विकसित भारत विजन एज प्राइम मिनिस्टर मोदी लेज डाउन द रोड मैप फॉर विकसित भारत इंडिया हैज ऑलरेडी एम्बार्क्ड ऑन द जर्नी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं. वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर मेरे देश के नौजवानों पर मेरे देश की माताओं को बहनों पर
0: प्राइम मिनिस्टर मोदीज बिग युवा एंड महिला आउटरीच फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट एंड इट केम ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंडिपेंडेंस डे स्पीच
1: मेरे देश की युवा शक्ति है विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है
0: Mr. Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says, Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है.
0: He announced free online coaching for various competitive examinations, said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
0: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
1: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा. गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा.
0: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore young people.
1: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
0: Women's reservation also echoed from the ramparts of the Red Fort. In a special appeal, Prime Minister Modi urged the opposition to support the bill and give women the rights they deserve.
1: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए.
0: The Congress hit back at Prime Minister Modi.
3: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं, जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग. अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर.
0: The two announcements put both education access and future employability at the center of the government's Independence Day message. Bureau Report, India Today.
2: For decades, India's journey to space had one name, ISRO. But now, a new generation of Indian companies is daring to rewrite that history. At the heart of this new chapter is Skyroot's Vikram 1, a rocket that could redefine how India reaches the stars. This Independence Day, Kshitija Gosavi takes you inside India's new space revolution and why this could be just the beginning.
4: 3, 2, 1, 0.
5: India's first private orbital launch.
6: What Skyroot achieved on its first orbital launch took SpaceX's Falcon 1 4 attempts.
7: We blew up a rocket 3 times before finally reaching orbit.
6: And that's exactly why Vikram 1 is one of the biggest moments in India's space history.
8: We are opening space for all.
6: For decades, only ISRO could launch rockets from India. Until 2020, private companies couldn't independently develop and launch orbital rockets from India. If you wanted to reach space, ISRO was the only path.
7: When we started Skyroot in 2018, there was no policy at that time, there was no funding environment at that time, and there was no talent specifically trained in the private sector. So it was literally extremely difficult. So we had to build our own path and chart our own direction to be able to solve all these problems.
6: So when Skyroot Aerospace was founded in 2018, it wasn't just trying to build a rocket. It had to help build an entire new industry. The company had to develop its own rocket engines, carbon fiber structures, avionics, software manufacturing systems. Also raise millions in fundings for one of the riskiest businesses on earth. Work through a brand new regulatory framework and then integrate everything for a launch from ISRO Sriharikota spaceport. And here's the hardest part. A rocket gets one chance. It has to ignite perfectly, survive massive vibrations, separate its stages within seconds, accelerate to nearly 28,000 kilometers per hour, and place satellites into orbit with extraordinary precision. That's why maiden orbital launches are so difficult. And there's a very important point to note. Well, SpaceX's Falcon 1 reached orbit only on its 4th launch, after 3 consecutive failures. And what about Vikram 1? Skyroot's Vikram 1 reached orbit on its very first orbital attempt, a remarkable achievement for any new launch company.
7: So Skyroot is the new launch player globally. So there are only two companies which are regularly launched to space, which is SpaceX and Rocket Lab. And then now we, with our successful launch, now we are like opened access to space much higher.
6: And this isn't just win for Skyroot. It's the proof that India's space story is entering a new chapter, where private space companies don't just support missions. They build rockets, launch satellites, and compete on the global stage. And Vikram 1? Vikram 1 wasn't just carrying satellites. It was carrying the future of India's private space industry.
2: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.

0: He later revealed the performance was completely impromptu, calling it the joy of music despite being in pain. A recent Usher concert in New Delhi sparked bizarre online speculation about some fans claimed the singer did not look like himself. Some even suggested he could be a clone, though there is no evidence supporting the claim. A Japanese woman traveled thousands of kilometers to Uttarakhand to fulfill a promise to her late husband. Miyako Ketlet carried his ashes to Bageshwar and performed his final rituals before immersing them in the Saryu River.
1: Hello everyone, mera naam Shilpi Jain hai. और जैसा कि अभी तक आप लोगों ने न्यूज में देख ही लिया होगा जो फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी
0: A passenger on Air India flight from Phuket to Delhi described the terrifying turbulence encounter.
1: ये आप देख सकते हैं मेरा बोर्डिंग पास मेरी सीट थी 23F
0: Claiming the aircraft suddenly dropped around 300 feet. She called the experience a near-death experience after flight AI2379 encountered severe turbulence.
1: कुछ लोग जो मेरे आसपास थे इनफैक्ट वो लोग काफी ज्यादा पीछे की साइड कोई इधर की साइड और काफी अलग अलग तरीके की लोगों को इंजरी आई है और जब ये इंसिडेंट हुआ क्रू मेंबर काफी अच्छा था काफी अच्छे से सपोर्ट करा दैट आई अप्रिशिएट बट उन लोगों ने एक चीज बोली कि आप लोग कहीं भी वीडियो बना के इस इंसिडेंट को मत डालना क्योंकि इससे हमारी रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगा इससे हमारी रेपुटेशन खराब होगी जो कि मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगा

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।

धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: are watching India Today.
1: Tamil Nadu politics has witnessed yet another personal political spat with BJP state chief Nayanar Nagendran's remarks about Chief Minister Vijay's mother triggering widespread backlash. Nagendran has made a personal remark about Vijay's parentage, saying he should go home and ask his mother instead of looking for his father in the Legislative Assembly. He then linked the remark to the functioning of the state government. His remarks have drawn criticism even from within the BJP. State Vice President Khushbu Sundar called them disgusting and unacceptable, saying women should never be used to make a political point. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore too condemned the remarks, accusing Nagendran of stooping to low-level politics and demanding an unconditional apology. Amid the backlash, Nayanar Nagendran defended himself, saying he had no ulterior motive and had not targeted anyone personally. He alleged his speech was being twisted for political gain, saying his concern is for the mother, motherland and mother tongue.
2: சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பாவை இருந்த அப்பாவை தேடுவாங்க. வீட்டுல போய் அம்மாட்ட கேட்டா தானே அப்பா யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சட்டமன்றத்தில போய் அப்பாவை தேடுனா யாரும் தெரியல. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆக்சன் தான் நடந்து கொள்ளுமா?
1: And well, the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, at an Independence Day event attended by AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
3: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
4: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पर बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
5: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए. दिखता है, सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है. अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
6: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
7: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा, पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। और पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
8: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए, सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे, बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है सोनिया गांधी से सीखे, सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
1: And while during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
9: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
10: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
9: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
10: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
9: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
10: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
7: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajneetik virodhiyon ko lekar. बात ये है, हकीकत ये है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
6: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
10: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
1: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा.
1: Prime Minister also emphasized on strengthening domestic defense manufacturing and reduce its dependence on defense imports.
0: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा. नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी.
1: Prime Minister Modi also pointed out that innovation in clean energy technologies would be essential for meeting future energy requirements.
0: हमें ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है. हमें दुनिया में दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं.
1: Prime Minister Modi also mentioned that India's soft power was the seventh dhara or the seventh pillar to realize Viksit Bharat vision. As Prime Minister Modi lays down the roadmap for Viksit Bharat, India has already embarked on the journey to become a developed nation. Bureau Report, India Today.
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
0: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं. और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर.
1: Prime Minister Modi's big Yuva and Mahila outreach from the ramparts of Red Fort, and it came during Prime Minister Modi's Independence Day speech.
0: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है.
1: Prime Minister Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
0: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है. और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है.
1: He announced free online coaching for various competitive examinations, said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
0: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
1: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
0: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा. गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा.
1: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore young people.
0: हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
1: Women's reservation also echoed from the ramparts of the Red Fort. In a special appeal, Prime Minister Modi urged the opposition to support the bill and give women the rights they deserve.
0: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए.
1: The Congress hit back at Prime Minister Modi,
3: Tanır Manço.

0: चुका है। राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं, जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर।
1: The two announcements put both education access and future employability at the center of the government's Independence Day message. Bureau Report, India Today.
2: For decades, India's journey to space had one name, ISRO. But now, a new generation of Indian companies is daring to rewrite that history. At the heart of this new chapter is Skyroot's Vikram 1, a rocket that could redefine how India reaches the stars. This Independence Day, Kshitija Gosavi takes you inside India's new space revolution and why this could be just the beginning.
3: 2-1-0.
4: India's first private orbital launch.
5: What Skyroot achieved on its first orbital launch took SpaceX's Falcon 1 four attempts.
6: We put up a rocket three times before finally reaching orbit.
5: And that's exactly why Vikram 1 is one of the biggest moments in India's space history.
7: We are opening space for all.
5: For decades, only ISRO could launch rockets from India. Until 2020, private companies couldn't independently develop and launch orbital rockets from India. If you wanted to reach space, ISRO was the only path.
8: When we started Skyroot in 2018, there was no policy at that time, there was no funding environment at that time, and there was no talent specifically trained in the private sector. So it was literally extremely difficult. So we had to build our own path and chart our own direction to be able to solve all these problems.
5: So when Skyroot Aerospace was founded in 2018, it wasn't just trying to build a rocket. It had to help build an entire new industry. The company had to develop its own rocket engines, carbon fiber structures, avionics, software manufacturing systems. Also raise millions in fundings for one of the riskiest businesses on Earth. Work through a brand new regulatory framework and then integrate everything for a launch from ISRO Sriharikota spaceport. And here's the hardest part. A rocket gets one chance. It has to ignite perfectly, survive massive vibrations, separate its stages within seconds, accelerate to nearly 28,000 kilometers per hour, and place satellites into orbit with extraordinary precision. That's why maiden orbital launches are so difficult. And there's a very important point to note. Well, SpaceX's Falcon 1 reached orbit only on its fourth launch, after three consecutive failures. And what about Vikram 1? Skyroot's Vikram 1 reached orbit on its very first orbital attempt, a remarkable achievement for any new launch company.
8: So Skyroot is the new launch player globally, so there are only two companies which are regularly launched to space, which is SpaceX and Rocket Lab. And then now we, with our successful launch, now we are like opened access to space much higher.
5: And this isn't just win for Skyroot. It's the proof that India's space story is entering a new chapter, where private space companies don't just support missions, they build rockets, launch satellites, and compete on the global stage. And Vikram 1? Vikram 1 wasn't just carrying satellites, it was carrying the future of India's private space industry.
2: Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Eka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendra Nath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
9: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
3: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया। यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है। यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
10: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं खाएंगे, मेरा जो भी हो। लेकिन अब वो अंतिम समय, मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक कर रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था, तो उनको जाने नहीं दिया गया।
11: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो सीएस साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक, अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर क्यों रखें। सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से। अगर यहाँ पे आप इलाज करते, इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं। कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं। तो ये सर, ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
12: नहीं, अभी स्थिति है लुक लाइट काफ़ी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है। उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं, उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं। और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए, पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
2: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. To stay tuned to India Today.
13: You are watching India Today.

0: Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, at an Independence Day event attended by AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
1: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
2: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पर बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्य दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
3: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए. दिखता है, सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है. अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है.
4: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शन में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है.
5: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा. पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा. आज पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई. यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे. सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो.
6: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए. सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे. बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे. सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है. उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.
0: And well, during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
7: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है. आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है. आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
8: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
7: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
8: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
7: बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
8: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
9: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajneetik virodhiyon ko lekar. बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
10: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
8: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau Report, India Today.
0: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined seven streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaktidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the seven streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है हमें वहां पहुंचना है हमें उस जगह को हाथ लगाना है
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: Hame innovation ka hub banna hai. Humne UPI aur digital public infrastructure mein loha manwa liya hai. Hamari taakat ka parichay karwa diya hai. Ab Bharat ko digital public technologies usko bhi duniya ke kone kone tak pahunchana hai. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए
0: मोदी ऑल्सो डिटेल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड सीमलेस कनेक्टिविटी
1: यह गतिशक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा मॉडर्न हाईवे चाहिए इनलाइन वाटरवे चाहिए एयरपोर्ट चाहिए हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा
0: प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन डिफेंस इम्पोर्ट्स
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो पॉइंटेड आउट दैट इनोवेशन इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज वुड बी एसेंशियल फॉर मीटिंग फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है हमें दुनिया में दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो मेंशन्ड दैट इंडिया सॉफ्ट पावर वाज द सेवेंथ धारा और द सेवेंथ पिलर टू रियलाइज विकसित भारत विजन एज प्राइम मिनिस्टर मोदी लेज डाउन द
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी हेल्ड द यूथ एंड विमेन ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर मेरे देश के नौजवानों पर मेरे देश की माताओं को बहनों पर
0: प्राइम मिनिस्टर मोदीज बिग युवा एंड महिला आउटरीच फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट एंड इट केम ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंडिपेंडेंस डे स्पीच
1: मेरे देश की युवा शक्ति है विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है
0: प्राइम मिनिस्टर मोदीज असर्टेड Youth will turn dreams into reality, says Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है इतना ही नहीं विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है.
0: He announced free online coaching for various competitive examinations. Said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
0: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
1: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा. गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा.
0: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore young people.
1: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
0: Women's reservation also echoed from the ramparts of the Red Fort. In a special appeal, Prime Minister Modi urged the opposition to support the bill and give women the rights they deserve.
1: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए.
0: The Congress hit back at Prime Minister Modi.
3: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं, जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग. अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर.
0: The two announcements put both education access and future employability at the center of the government's Independence Day message. Bureau Report, India Today.
2: Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Eka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendra Nath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
4: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा. केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है जहां पूरे निष्पक्षता से होगी. जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा. सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके. इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
5: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया. यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है. यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया. तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
6: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिए कि हम कुछ नहीं खाएंगे मेरा जो भी हो, लेकिन अब वो अंतिम समय मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक के रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था तो उनको जाने नहीं दिया गया।
7: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो सीएस साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक, अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर क्यों रखें? सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से, अगर यहाँ पे आप इलाज करते इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं, कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं, तो ये सर ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
8: नहीं, अभी स्थिति है लुक लाइट काफ़ी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं, और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए, पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
2: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
9: You are watching India Today.

0: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम, उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्य हो इतना बल लगाना पड़ता है, आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं, और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: Tamil Nadu politics has witnessed yet another personal political spat with BJP state chief Nayanar Nagendran's remarks about Chief Minister Vijay's mother triggering widespread backlash. Nagendran has made a personal remark about Vijay's parentage, saying he should go home and ask his mother instead of looking for his father in the Legislative Assembly. He then linked the remark to the functioning of the state government. His remarks have drawn criticism even from within the BJP. State Vice President Khushbu Sundar called them disgusting and unacceptable, saying women should never be used to make a political point. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore too condemned the remarks, accusing Nagendran of stooping to low-level politics and demanding an unconditional apology. Amid the backlash, Nayanar Nagendran defended himself, saying he had no ulterior motive and had not targeted anyone personally. He alleged his speech was being twisted for political gain, saying his concern is for the mother, motherland and mother tongue.
2: சட்டமன்றத்திலேயே போய் அப்பாவை இருந்த அப்பாவை இங்கே தேடுவாங்க. வீட்டுல போய் அம்மாட்ட கேட்டா தானே அப்பா யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பாவை தேடுனா யாரும் தெரியல. இப்படிப்பட்டவருடைய ஆட்சி தான் இன்னைக்கு நடந்து கொண்டுமா?
1: And well, the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, at an Independence Day event attended by AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
3: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
4: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पर बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
5: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए. दिखता है, सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है. अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कह दिया कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
6: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
7: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। और पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
8: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे। बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे। सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
1: And while during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
9: आज जो इस समारोह में उपस्थित हैं, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
10: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
9: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
10: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
9: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
10: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
7: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajneetik virodhiyon ko lekar. बात ये है, हकीकत ये है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
6: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
10: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
1: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined 7 streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaktidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the 7 streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on 3 key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए. हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं. एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है. हमें वहां पहुंचना है. हमें उस जगह को हाथ लगाना है.
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: हमें इनोवेशन का हब बनना है. हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है. हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है. अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज उसको भी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना है. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए.
0: मोदी आल्सो डिटेल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड सीमलेस कनेक्टिविटी.
1: यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए. इनलाइन वाटरवेज चाहिए. एयरपोर्ट चाहिए. हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा.
0: Prime Minister also emphasized on strengthening domestic defense manufacturing and reduce its dependence on defense imports.
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा. नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी.
0: Prime Minister Modi also pointed out that innovation in clean energy technologies would be essential for meeting future energy requirements.
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है. हमें दुनिया में दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं.
0: Prime Minister Modi also mentioned that India's soft power was the seventh dhara or the seventh

0: the journey to become a developed nation. Bureau Report, India Today.
1: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
2: पिछले पांच सात दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले पांच सात साल में करने हैं और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर मेरे देश के नौजवानों पर मेरे देश की माताओं को बहनों पर
3: Prime Minister Modi's big Yuva and Mahila outreach from the ramparts of Red Fort and it came during Prime Minister Modi's Independence Day speech.
2: मेरे देश की युवा शक्ति है विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है
3: Prime Minister Modi asserted youth will turn dreams into reality says Yuva Shakti the biggest contribution to Vikas
2: mere desh ki yuva shakti hai viksit bharat ki yatra mein yuvaon ki bahut badi bhumika hai itna hi nahi viksit bharat ka sabse bada labharthi bhi mere desh ka yuva hai aur isliye hame viksit bharat ke lakshya ko युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है
3: He announced free online coaching for various competitive examinations, said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
2: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास उत्तम टैलेंट है टीचर्स है उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं
3: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
2: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं बेटे हैं उनके तरफ ध्यान देना होगा उन बेटियों पर ध्यान देना होगा गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा
3: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore young people.
2: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे
3: Women's reservation also echoed from the ramparts of the Red Fort. In a special appeal, Prime Minister Modi urged the opposition to support the bill and give women the rights they deserve.
2: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
3: The Congress hit back at Prime Minister Modi.
4: कानून बन चुका है राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं कर रहे आप लोग अब वो सपना देख रहे हैं हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर
3: The two announcements put both education access and future employability at the center of the government's Independence Day message. Bureau Report, India Today.
1: For decades, India's journey to space had one name, ISRO. But now, a new generation of Indian companies is daring to rewrite that history. At the heart of this new chapter is Skyroot's Vikram 1, a rocket that could redefine how India reaches the stars. This Independence Day, Kshitija Gosawi takes you inside India's new space revolution and why this could be just the beginning.
5: 2-1-0
6: India's first private orbital launch.
7: What Skyroot achieved on its first orbital launch took SpaceX's Falcon 1 4 attempts.
8: We blew up a rocket 3 times before finally reaching orbit.
7: And that's exactly why Vikram 1 is one of the biggest moments in India's space history.
9: We are opening space for all.
7: For decades, only ISRO could launch rockets from India. Until 2020, private companies couldn't independently develop and launch orbital rockets from India. If you wanted to reach space,

0: ISRO was the only path.
1: When we started Skyroot in 2018, there was no policy at that time, there was no funding environment at that time, and there was no talent specifically trained in the private sector. So it was literally extremely difficult. So we had to build our own path and chart our own direction to be able to solve all these problems.
0: So when Skyroot Aerospace was founded in 2018, it wasn't just trying to build a rocket. It had to help build an entire new industry. The company had to develop its own rocket engines, carbon fiber structures, avionics, software manufacturing systems. Also raise millions in fundings for one of the riskiest businesses on Earth. Work through a brand new regulatory framework and then integrate everything for a launch from ISRO Sriharikota Spaceport. And here's the hardest part. A rocket gets one chance. It has to ignite perfectly, survive massive vibrations, separate its stages within seconds, accelerate to nearly 28,000 kilometers per hour, and place satellites into orbit with extraordinary precision. That's why maiden orbital launches are so difficult. And there's a very important point to note. Well, SpaceX's Falcon 1 reached orbit only on its fourth launch, after three consecutive failures. And what about Vikram 1? Skyroot's Vikram 1 reached orbit on its very first orbital attempt, a remarkable achievement for any new launch company.
1: Skyroot is the new launch player globally, so there are only two companies which are regularly launched to space, which is SpaceX and Rocket Lab. And then now we, with our successful launch, now we are like opened access to space much higher.
0: And this isn't just win for Skyroot. It's the proof that India's space story is entering a new chapter, where private space companies don't just support missions, they build rockets, launch satellites, and compete on the global stage. And Vikram 1? Vikram 1 wasn't just carrying satellites, it was carrying the future of India's private space industry.
2: Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Eka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendra Nath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
3: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
4: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया। यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है। यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
5: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिए कि हम कुछ नहीं खाएंगे मेरा जो भी हो, लेकिन अब वो अंतिम समय मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक के रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था तो उनको जाने नहीं दिया गया।
6: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो सीएस साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम हैं, तो ठीक, अगर आप सक्षम हैं तो आप पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर क्यों रखें? सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से, अगर यहाँ पे आप इलाज करते इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं, कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं, तो ये सर ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
7: नहीं, अभी स्थिति है लुक लाइट काफ़ी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं, और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए, पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
2: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. To stay tuned to India Today.
8: You are watching India Today.

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: How many of you take magnesium at night? क्या लेते हो रात को सोने के लिए?
3: कुछ नहीं, रील देखते हैं।
2: रील देखते हो? किसकी रील देखते हो?
3: आपको।
2: जूही, what do you do for sleep?
3: मैं घर जाती हूँ, नींद आ जाती है। अगर इंसान थक के जाए तो ये सब नाटंकी नहीं होता।
2: Every second wellness reel is telling you about मैग्नीशियम। दे से इट विल फिक्स योर स्लीप, दे से जोड़ों का पेन चला जाएगा, सर का दर्द चला जाएगा। डज दैट रियली होल्ड अप? लेट्स टेल यू इन दिस वीडियो। We've spoken with the Dr. Biplav Das, Director of Neurology at Batra Hospital, New Delhi. Now, magnesium, remember, is one of the several minerals your body runs on. It's crucial for mood and brain function. It balances blood sugar, regulates blood pressure, and also moves calcium and potassium in and out of your cells, which is what keeps your heartbeat in rhythm as well. So, magnesium ye sab karta hai, par iska sleep se kya lena dena hai? Here's story number one. A systematic review pooled 3 trials on magnesium and insomnia in older adults, 151 people across 3 countries. The pooled results actually showed people fell asleep about 70 minutes faster on magnesium than a placebo. That sounds promising, right? Except that the reviewers rated the evidence low to very low quality, with moderate to high risk of bias. The entire groundwork on which magnesium is being sold as a sleeping pill is shaky. अब सुनिए स्टोरी नंबर टू। मैग्नीशियम के एविडेंस है कि आपके मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, और ये सारी चीजें स्लीप की क्वालिटी को इंपैक्ट करती है। तो मैग्नीशियम आपके क्रैम्स में हेल्प कर रहा है, आपकी रेस्टलेसनेस में हेल्प कर रहा है, स्लीप में नहीं, विच इज अ बाय प्रोडक्ट। सो बिफोर यू क्रेडिट मैग्नीशियम फॉर द बेटर नाइट, आस्क योरसेल्फ, इट इज एक्चुअली फिक्सिंग योर स्लीप और इट्स फिक्सिंग समथिंग एल्स। But the most important thing about magnesium that nobody tells you, that not all magnesium is actually equal. Magnesium glycinate is well absorbed. Citrate is also well absorbed, but it can upset your stomach, which is why it's often used for constipation. Also, magnesium oxide is cheap and common, but your body barely absorbs it. So the magnesium on the label doesn't guarantee magnesium in your body. Kitna khana hai is also very important. If you're having more than 350 mg a day, you have a risk of diarrhea, nausea, even cramping. Also, agar aapko koi kidney disease hai, agar aap kisi antibiotics par hain, to aap please ise skip karein. Agar aap koi aur blood pressure ki medication le rahe hain, to apne doctor se pooch kar magnesium add karein. Just because ye supplement hai, doesn't mean aap ise khana shuru kar denge. Magnesium kiske liye hai? देखिए, अगर आपकी कंफर्म्ड डेफिशिएंसी है मैग्नीशियम में, तो प्लीज इसे लीजिए, बट ओनली आफ्टर यू हैव गॉटन अ ब्लड टेस्ट डन एंड योर डॉक्टर टेल्स यू दैट यू आर एक्चुअली लो इन इट। और ये रील उस इंसान के साथ शेयर करना चाहिए जिसको रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसको लगता है कि मेलाटोनिन और मैग्नीशियम खाने से सब फर्क पड़ जाएगा। उस पर भी हमने एक रील बनाई है, वो जाके देखिए।

0: Tamil Nadu politics has witnessed yet another personal political spat with BJP state chief Nayanar Nagendran's remarks about Chief Minister Vijay's mother triggering widespread backlash. Nagendran has made a personal remark about Vijay's parentage, saying he should go home and ask his mother instead of looking for his father in the Legislative Assembly. He then linked the remark to the functioning of the state government. His remarks have drawn criticism even from within the BJP. State Vice President Khushbu Sundar called them disgusting and unacceptable, saying women should never be used to make a political point. Tamil Nadu Congress chief Manikam Tagore too condemned the remarks, accusing Nagendran of stooping to low-level politics and demanding an unconditional apology. Amid the backlash, Nayanar Nagendran defended himself, saying he had no ulterior motive and had not targeted anyone personally. He alleged his speech was being twisted for political gain, saying his concern is for the mother, motherland and mother tongue.
1: சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பா வைங்க அப்பா வைக்கையே தேடுவாங்க. வீட்டில போய் அம்மாட்ட கேட்டா தானே அப்பா யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பா வை தேடுனா யாரும் தெரியல. இப்படிப்பட்டவங்களுடைய ஆட்சி தான் இன்னைக்கு நடந்து கொண்டுமா?
0: And well, the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, at an Independence Day event attended by AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
2: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
3: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पर बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
4: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए. दिखता है, सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है. अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
5: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
6: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। यहाँ पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
7: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे। बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे। सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
0: And while during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
8: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
9: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
8: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
9: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
8: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
9: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
6: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajnitik virodhiyon ko lekar. बात बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
5: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
9: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
0: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined seven streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaktidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the seven streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए. हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं. एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है. हमें वहां पहुंचना है. हमें उस जगह को हाथ लगाना है.
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: हमें इनोवेशन का हब बनना है. हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है. हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है. अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज उसको भी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना है. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए.
0: मोदी आल्सो डिटेल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड सीमलेस कनेक्टिविटी.
1: ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए. इनलाइन वाटरवेज चाहिए. एयरपोर्ट चाहिए. हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा.
0: Prime Minister also emphasized on strengthening domestic defense manufacturing and reduce its dependence on defense imports.
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा. नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी.
0: Prime Minister Modi also pointed out that innovation in clean energy technologies would be essential for meeting future energy requirements.
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है. हमें दुनिया में दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं.
0: Prime Minister Modi also mentioned that India's soft power was the seventh dhara or the seventh pillar to realize Viksit Bharat vision. As Prime Minister Modi lays down the roadmap for Viksit Bharat, India has already embarked on the journey to become a developed nation. Bureau Report, India Today.
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं. और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर.
0: Prime Minister Modi's big Yuva and Mahila outreach from the ramparts of Red Fort, and it came during Prime Minister Modi's Independence Day speech.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है.
0: Prime Minister Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है.
0: He announced free online coaching for various competitive examinations, said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
0: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
1: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा. गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा.
0: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore young people.
1: हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
0: Women's reservation also echoed from the ramparts of the Red Fort. In a special appeal, Prime Minister Modi urged the opposition to support the bill and give women the rights they deserve.
1: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए.
0: The Congress hit back at Prime Minister Modi.
3: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं, जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं कर रहे आप लोग. अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर.
0: The two announcements put both education access and future employability at the center of the government's Independence Day message. Bureau Report, India Today.
2: Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Ekka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendra Nath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
4: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा. केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी. जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा. सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके. इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
5: साहब अपने युवाओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया, यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है, यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया साहब। उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
6: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिए कि हम कुछ नहीं खाएंगे मेरा जो भी हो, लेकिन अब वो अंतिम समय मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक कर रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था तो उनको जाने नहीं दिया गया।
7: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो सीएस साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर क्यों रखें। सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से, अगर यहाँ पे आप इलाज करते इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं, कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं, तो ये सर ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
8: नहीं, अभी स्थिति है लुक लाइट काफ़ी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं उस स्थिति में संभावना है, सीजर वगैरह भी आ सकता है, इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं, और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए, पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
2: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. To stay tuned to India Today.
9: You are watching India Today.

Flu season is here, and this time it's got a new name attached to it. You'll probably remember H1N1. Yes, it's back in Delhi. For this video, we've spoken with Dr. Suranjit Chatterjee, internal medicine specialist at Apollo Hospitals. The numbers tell the story here because according to reports, Delhi has already logged around 1,300 swine flu H1N1 cases this monsoon. That is nearly six times last year's count for the same period. The real numbers are likely to be much higher. So if your kid comes back home with a fever, how do you know? Which one is it actually? देखिए, regular flu और H1N1 दिखते identical हैं पर है नहीं। कहने को उसमें भी fever होगा, cough होगा, body ache होगा, sore throat होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा detail में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो H1N1 का fever होता है, वो suddenly spike करता है और बहुत देर तक ऊपर रहता है। It is stubbornly high. Also in certain cases breathlessness हो जाती है, deep fatigue होता है, आपको disproportionately ठंड लगेगी और muscle और joints में भी बहुत pain होगा। तो एक adult तो शायद ये differentiation बता सके, पर बच्चों को ये सारे symptoms बताना बहुत मुश्किल होता है। So your first thing to do if you have a flu this time of the year is please get tested. The only way to confirm is to actually get it tested, especially if somebody around you has already got H1N1. अब treatment की बात करते हैं। अगर आप H1N1 positive निकले हैं, तो generally ये cases आजकल mild हो गए हैं और 3 से 5 दिन में clear हो जाते हैं, just like flu. And क्योंकि ये कि viral infection है, आप ज़्यादातर इसका symptomatic treatment देते हैं, आपका fever manage करा जाएगा, आपका body pain manage करा जाएगा, आपको बहुत सारा rest करने को बोला जाएगा and fluids लेने को भी कहेंगे। लेकिन ये problematic किन cases में हो जाता है? अगर आप elderly हैं, अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर if you are a pregnant woman, anyone with diabetes, heart disease or a lung condition, ऐसी conditions में डॉक्टर आपको एक antiviral पे शुरू कर देंगे, oseltamivir या फिर Tamiflu के नाम से, ये बहुत famous है। अब मैंने आपको नाम बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप self prescribe कर देंगे, let your doctor take that call. एक और सवाल आता है कि अगर आपने influenza shot या flu shot लिया हुआ है, क्या वो आपको help कर सकता है? देखिए, seasonal flu के जो shots आते हैं, उसमें H1N1 का protection होता है, but इसका कोई guarantee नहीं है कि अगर आपने shot ले लिया, आपको infection नहीं होगा। इन्फेक्शन का जो डिग्री ऑफ इम्पैक्ट है वो कम होगा इस शॉट से। न्यूबॉर्न्स और टॉडलर्स के वैक्सीनेशन स्केड्यूल में ये ऑलरेडी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या नहीं करना है, सबसे पहले अगर आपके बच्चे को फीवर है तो उसे स्कूल ना भेजें, पूरे क्लास को इम्पैक्ट करने से बचाएं। दूसरा, सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना है। एंटीबायोटिक्स आर अ नो, H1N1 इज अ वायरस, एंटीबायोटिक्स डू नथिंग टू इट, दे ओनली कॉज मोर प्रॉब्लम। एंड लास्टली, do not skip a good hand wash routine. Mask पहनना थोड़ा difficult हो जाता है, लेकिन अगर आप constantly अपने hand wash कर रहे हैं, sneeze सही तरीके से कर रहे हैं या cough सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी काफी अच्छे से बचा सकते हैं।

0: are watching India Today.
1: Tamil Nadu politics has witnessed yet another personal political spat, with BJP state chief Nayanar Nagendran's remarks about Chief Minister Vijay's mother triggering widespread backlash. Nagendran has made a personal remark about Vijay's parentage, saying he should go home and ask his mother instead of looking for his father in the Legislative Assembly. He then linked the remark to the functioning of the state government. His remarks have drawn criticism even from within the BJP. State Vice President Khushbu Sundar called them disgusting and unacceptable, saying women should never be used to make a political point. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore too condemned the remarks, accusing Nagendran of stooping to low-level politics and demanding an unconditional apology. Amid the backlash, Nayanar Nagendran defended himself, saying he had no ulterior motive and had not targeted anyone personally. He alleged his speech was being twisted for political gain, saying his concern is for the mother, motherland and mother tongue.
2: சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பாவை இருந்த அப்பாவை தேடுறாங்க. வீட்டில போய் அம்மாட்ட கேட்டா தானே அப்பா யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சட்டமன்றத்தில போய் அப்பாவை தேடுறா யாருன்னு கேட்டாங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி தான் நடந்து கொள்ளுமா?
1: And well, the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, at an Independence Day event attended by AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
3: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
4: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्य दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
5: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए. दिखता है, सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
6: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
7: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। और पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
8: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे। बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे। सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
1: And while during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
9: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
10: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
9: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
10: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
9: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
10: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
7: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajneetik virodhiyon ko lekar. बात बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
6: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
10: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
1: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined seven streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaktidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the seven streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए. हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं. एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है. हमें वहां पहुंचना है. हमें उस जगह को हाथ लगाना है.
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: हमें इनोवेशन का हब बनना है. हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है. हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है. अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना है. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए.
0: मोदी ऑल्सो डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड सीमलेस कनेक्टिविटी.
1: यह गतिशक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए. इनलाइन वाटरवेज चाहिए. एयरपोर्ट चाहिए. हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा.
0: Prime Minister also emphasized on strengthening domestic defense manufacturing and reduce its dependence on defense imports.
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा. नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी.
0: Prime Minister Modi also pointed out that innovation in clean energy technologies would be essential for meeting future energy requirements.
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है. हमें दुनिया में दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं.
0: Prime Minister Modi also mentioned that India's soft power was the seventh dhara or the seventh pillar to realize Viksit Bharat vision. As Prime Minister Modi lays down the roadmap for Viksit Bharat, India has already embarked on the journey to become a developed nation. Bureau Report, India Today.
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं. और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर.
0: Prime Minister Modi's big Yuva and Mahila outreach from the ramparts of Red Fort, and it came during Prime Minister Modi's Independence Day speech.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है.
0: Prime Minister Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says Yuva Shakti, the biggest contributor.

0: very first orbital attempt, a remarkable achievement for any new launch company.
1: Skyroot is the new launch player globally. So there are only two companies which are regularly launched to space, which is SpaceX and Rocket Lab. And then now we, with our successful launch, now we are like opened access to space much higher.
0: And this isn't just a win for Skyroot. It's the proof that India's space story is entering a new chapter, where private space companies don't just support missions, they build rockets, launch satellites, and compete on the global stage. And Vikram-1? Vikram-1 wasn't just carrying satellites, it was carrying the future of India's private space industry. Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Eka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendra Nath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
2: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
3: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया। यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है। यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
4: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिए कि हम कुछ नहीं खाएंगे, मेरा जो भी हो। लेकिन अब वो अंतिम समय, मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक के रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था, तो उनको जाने नहीं दिया गया।
5: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो CS साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक है। अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर क्यों रखें? सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से। अगर यहाँ पे आप इलाज करते, इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं। उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं, कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं। तो ये सर, ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
6: नहीं, अभी स्थिति है, इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है। उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं, उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं। और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए, पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
0: But that is time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
7: You are watching India Today.

0: are watching India Today.
1: Tamil Nadu politics has witnessed yet another personal political spat, with BJP state chief Nayanar Nagendran's remarks about Chief Minister Vijay's mother triggering widespread backlash. Nagendran has made a personal remark about Vijay's parentage, saying he should go home and ask his mother instead of looking for his father in the Legislative Assembly. He then linked the remark to the functioning of the state government. His remarks have drawn criticism even from within the BJP. State Vice President Khushbu Sundar called them disgusting and unacceptable, saying women should never be used to make a political point. Tamil Nadu Congress chief Manikam Tagore too condemned the remarks, accusing Nagendran of stooping to low-level politics and demanding an unconditional apology. Amid the backlash, Nayanar Nagendran defended himself, saying he had no ulterior motive and had not targeted anyone personally. He alleged his speech was being twisted for political gain, saying his concern is for the mother, motherland and mother tongue.
2: சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பாவை இருந்த அப்பாவை தேர்வாங்க வீட்டிலே அம்மா கிட்ட கேட்டா தானே அப்பா யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பாவை தேர்வா யாரும் தெரியல. இப்படிப்பட்டவங்க ஆட்சி தான் நடந்து கொள்ளுமா?
1: And well, the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, at an Independence Day event attended by AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
3: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than, they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
4: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पर बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्य दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
5: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए. दिखता है, सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है. अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
6: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शन में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
7: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। आज पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी ला के रख दो।
8: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे। बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे। सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
1: And while during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
9: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
10: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
9: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
10: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
9: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
10: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
7: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajneetik virodhiyon ko lekar. बात ये है, हकीकत ये है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
6: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
10: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
1: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined seven streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaktidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the seven streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है हमें वहां पहुंचना है हमें उस जगह को हाथ लगाना है
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: हमें इनोवेशन का हब बनना है हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना है Made in India 6G, हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
0: Modi also detailed the importance of development and seamless connectivity.
1: ये गति शक्ति देश के अंदर seamless fast connectivity पर हमें बल देना होगा। शहरों को high speed rail से हमें जोड़ना होगा। Modern highways चाहिए, inland waterways चाहिए, airports चाहिए। हमें हमारे ports को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा
0: प्राइम मिनिस्टर आल्सो एम्फसाइज्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन डिफेंस इंपोर्ट्स
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो पॉइंटेड आउट दैट इनोवेशन इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज वुड बी एसेंशियल फॉर मीटिंग फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है हमें दुनिया में दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो मेंशन्ड दैट इंडिया सॉफ्ट पावर वाज द सेवेंथ धारा और द सेवेंथ पिलर टू रियलाइज विकसित भारत विजन एज प्राइम मिनिस्टर मोदी लेज डाउन द रोड मैप फॉर विकसित भारत इंडिया हैज ऑलरेडी एम्बार्क्ड ऑन द जर्नी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर मेरे देश के नौजवानों पर मेरे देश की माताओं को बहनों पर
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी बिग युवा एंड महिला आउटरीच फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट एंड इट केम ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिपेंडेंस डे स्पीच
1: मेरे देश की युवा शक्ति है विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है
0: Mr. Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says, Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
0: He announced free online coaching for various competitive examinations, said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
1: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore young people.
1: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: Women's reservation also echoed from the ramparts of the Red Fort. In a special appeal, Prime Minister Modi urged the opposition to support the bill and give women the rights they deserve.
1: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: The Congress hit back at Prime Minister Modi.
3: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं, जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग? अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर।
0: The two announcements put both education access and future employability at the center of the government's Independence Day message. Bureau Report, India Today.
2: Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Eka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendra Nath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
4: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
5: साहब अपने युवाओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया, यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है, यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
6: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं खाएंगे मेरा जो भी हो, लेकिन अब वो अंतिम समय मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक के रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था तो उनको जाने नहीं दिया गया।
7: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो सीएस साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक, अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर क्यों रखें? सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से, अगर यहाँ पे आप इलाज करते इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं, कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं, तो ये सर ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
8: नहीं, अभी स्थिति है लुक लाइट काफ़ी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए, पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
2: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Stay tuned to India Today.
9: You are watching India Today.

0: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम, उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है, आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं, और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: Tamil Nadu politics has witnessed yet another personal political spat, with BJP state chief Nayanar Nagendran's remarks about Chief Minister Vijay's mother triggering widespread backlash. Nagendran has made a personal remark about Vijay's parentage, saying he should go home and ask his mother instead of looking for his father in the Legislative Assembly. He then linked the remark to the functioning of the state government. His remarks have drawn criticism even from within the BJP. State Vice President Khushbu Sundar called them disgusting and unacceptable, saying women should never be used to make a political point. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore too condemned the remarks, accusing Nagendran of stooping to low-level politics and demanding an unconditional apology. Amid the backlash, Nayanar Nagendran defended himself, saying he had no ulterior motive and had not targeted anyone personally. He alleged his speech was being twisted for political gain, saying his concern is for the mother, motherland and mother tongue.
2: சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பா வைங்க அம்மா வைக்கிய தேர்வாங்க வீட்டுல போய் அம்மாட்ட கேட்டா தானே அப்பா யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சட்டமன்றத்தில போய் அப்பா வை தேர்வா யாருன்னு தெரியல. இப்படிப்பட்டவங்க ஆட்சி தான் நடந்து கொள்ளுமா?
1: And well, the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, at an Independence Day event attended by AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
3: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than, they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
4: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पर बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्य दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
5: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए, दिखता है, सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी। जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है। अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आज़ादी के अंदर हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
6: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
7: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। आज पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
8: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे। बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे। सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
1: And while during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
9: आज जो इस समारोह में उपस्थित हैं, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
10: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
9: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
10: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
9: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
10: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
11: Pradhan Mantri Lal Kile se dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajnitik virodhiyon ko lekar. Baat ye hai, hakikat ye hai ki jo mudda urban Naxal uthate hain, jo Pradhan Mantri ke soch mein urban Naxal hain, jo mang wo uthate hain, वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
6: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
10: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
1: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined seven streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaptidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the seven streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए. हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं. एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है. हमें वहां पहुंचना है. हमें उस जगह को हाथ लगाना है.
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: हमें इनोवेशन का हब बनना है. हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है. हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है. अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज उसको भी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना है. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए.
0: मोदी आल्सो डिटेल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड सीमलेस कनेक्टिविटी.
1: यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए. इनलाइन वाटरवेज चाहिए. एयरपोर्ट चाहिए. हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा.
0: Prime Minister also emphasized on strengthening domestic defense manufacturing and reduce its dependence on defense imports.
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा. नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी.
0: Prime Minister Modi also pointed out that innovation in clean energy technologies would be essential for meeting future energy requirements.
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है. हमें दुनिया में दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं.
0: Prime Minister Modi also mentioned that India's soft power was the seventh dhara or the seventh pillar to realize Viksit Bharat vision. As Prime Minister Modi lays down the roadmap for Viksit Bharat, India has already embarked on the journey to become a developed nation. Bureau Report, India Today.
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं. और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर.
0: Prime Minister Modi's big Yuva and Mahila outreach from the ramparts of Red Fort, and it came during Prime Minister Modi's Independence Day speech.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है.
0: Prime Minister Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है.
0: He announced free online coaching for various competitive examinations, said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
0: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
1: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा. गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा.
0: Alongside

0: hospital and joined the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
1: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया। यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है। यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
3: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं खाएंगे, मेरा जो भी हो। लेकिन अब वो अंतिम समय, मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक कर रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था, तो उनको जाने नहीं दिया गया।
4: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो CS साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक है। अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर क्यों रखें? सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से। अगर यहाँ पे आप इलाज करते, इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं। कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं आप, उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं। तो ये सर, ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
5: नहीं, अभी स्थिति है, लुक लाइट काफ़ी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है। उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं, उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं। और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए, पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
0: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
6: You are watching India Today.

0: watching India Today.
1: Tamil Nadu politics has witnessed yet another personal political spat, with BJP state chief Nayanar Nagendran's remarks about Chief Minister Vijay's mother triggering widespread backlash. Nagendran has made a personal remark about Vijay's parentage, saying he should go home and ask his mother instead of looking for his father in the Legislative Assembly. He then linked the remark to the functioning of the state government. His remarks have drawn criticism even from within the BJP. State Vice President Khushbu Sundar called them disgusting and unacceptable, saying women should never be used to make a political point. Tamil Nadu Congress chief Manikam Tagore too condemned the remarks, accusing Nagendran of stooping to low-level politics and demanding an unconditional apology. Amid the backlash, Nayanar Nagendran defended himself, saying he had no ulterior motive and had not targeted anyone personally. He alleged his speech was being twisted for political gain, saying his concern is for the mother, motherland and mother tongue.
2: சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பாவை இருந்த அப்பாவை தேர்வாங்க வீட்டிலே அம்மா கிட்ட கேட்டா தானே அப்பா யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பாவை தேர்வா யாருன்னு இப்படிப்பட்டவங்க ஆட்சி தான் நடந்து கொள்ளுமா?
1: And well, the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, he cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
3: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone, this shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party. And we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
4: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
5: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए, दिखता है सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
6: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शन में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
7: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा, पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। और पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
8: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे। बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे। सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
1: And well, during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
9: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
10: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
9: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
10: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
9: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
10: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
11: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajneetik virodhiyon ko lekar. बात ये है, हकीकत ये है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
6: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
10: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
1: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined seven streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaktidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the seven streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: Hame chote chote पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए. हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं. एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है. हमें वहां पहुंचना है. हमें उस जगह को हाथ लगाना है.
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: Hame innovation ka hub banna hai. Humne UPI aur digital public infrastructure mein loha manwa liya hai. Hamari taakat ka parichay karwa diya hai. Ab Bharat ko digital public technologies usko bhi duniya ke kone kone tak pahunchana hai. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए.
0: मोदी ऑल्सो डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड सीमलेस कनेक्टिविटी.
1: यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए. हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा.
0: Prime Minister also emphasized on strengthening domestic defense manufacturing and reduce its dependence on defense imports.
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा. नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी.
0: Prime Minister Modi also pointed out that innovation in clean energy technologies would be essential for meeting future energy requirements.
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है. हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं.
0: Prime Minister Modi also mentioned that India's soft power was the seventh dhara or the seventh pillar to realize Viksit Bharat vision. As Prime Minister Modi lays down the roadmap for Viksit Bharat, India has already embarked on the journey to become a developed nation. Bureau Report, India Today.
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं. वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर.
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी's बिग युवा एंड महिला आउटरीच फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट एंड इट केम ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी's इंडिपेंडेंस डे स्पीच.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है.
0: Mr. Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says, Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
0: He announced free online coaching for various competitive examinations, said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
1: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore young people.
1: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: Women's reservation also echoed from the ramparts of the Red Fort. In a special appeal, Prime Minister Modi urged the opposition to support the bill and give women the rights they deserve.
1: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: The Congress hit back at Prime Minister Modi.
3: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं, जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग? अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर।
0: The two announcements put both education access and future employability at the center of the government's Independence Day message. Bureau Report, India Today.
2: For decades, India's journey to space had one name, ISRO. But now, a new generation of Indian companies is daring to rewrite that history. At the heart of this new chapter is Skyroot's Vikram 1, a rocket that could redefine how India reaches the stars. This Independence Day, Kshitija Gosavi takes you inside India's new space revolution and why this could be just the beginning.
4: 2-1-0.
5: India's first private orbital launch.
6: What Skyroot achieved on its first orbital launch took SpaceX's Falcon 1 4 attempts.
7: We blew up a rocket 3 times before finally reaching orbit.
6: And that's exactly why Vikram 1 is one of the biggest moments in India's space history.
8: We are opening space for all.
6: For decades, only ISRO could launch rockets from India. Until 2020, private companies couldn't independently develop and launch orbital rockets from India. If you wanted to reach space, ISRO was the only path.
7: When we started Skyroot in 2018, there was no policy at that time, there was no funding environment at that time, and there was no talent specifically trained in the private sector. So it was literally extremely difficult. So we had to build our own path and chart our own direction to be able to solve all these problems.
6: So when Skyroot Aerospace was founded in 2018, it wasn't just trying to build a rocket. It had to help build an entire new industry. The company had to develop its own rocket engines, carbon fiber structures, avionics, software manufacturing systems. Also raise millions in fundings for one of the riskiest businesses on Earth. Work through a brand new regulatory framework and then integrate everything for a launch from ISRO Sriharikota spaceport. And here's the hardest part. A rocket gets one chance. It has to ignite perfectly, survive massive vibrations, separate its stages within seconds, accelerate to nearly 28,000 kilometers per hour, and place satellites into orbit with extraordinary precision. That's why maiden orbital launches are so difficult. And there's a very important point to note. Well, SpaceX's Falcon 1 reached orbit only on its fourth launch, after 3 consecutive failures. And what about Vikram 1? Skyroot's Vikram 1 reached orbit on its very first orbital attempt, a remarkable achievement for any new launch company.
7: So Skyroot is the new launch player globally. So there are only two companies which are regularly launched to space, which is SpaceX and Rocket Lab. And then now we, with our successful launch, now we are like opened access to space much higher.
6: And this isn't just a win for Skyroot. It's the proof that India's space story is entering a new chapter, where private space companies don't just support missions. They build rockets, launch satellites, and compete on the global stage. And Vikram 1? Vikram 1 wasn't just carrying satellites. It was carrying the future of India's private space industry.
2: Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi, demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Eka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendra Nath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
4: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
9: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया। यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है। यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
10: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं खाएंगे, मेरा जो भी हो। लेकिन अब वो अंतिम समय, मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक कर रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था, तो उनको जाने नहीं दिया गया।
11: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो CS साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक है, अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर क्यों रखें। सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से। अगर यहाँ पे आप इलाज करते, इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं। कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं आप, उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं। तो ये सर, ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
12: नहीं, अभी स्थिति है लुक लाइट काफी इम्बेलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है। उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं, और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए। पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
2: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
13: You are watching India Today.

0: are watching India Today.
1: Tamil Nadu politics has witnessed yet another personal political spat, with BJP state chief Nayanar Nagendran's remarks about Chief Minister Vijay's mother triggering widespread backlash. Nagendran has made a personal remark about Vijay's parentage, saying he should go home and ask his mother instead of looking for his father in the Legislative Assembly. He then linked the remark to the functioning of the state government. His remarks have drawn criticism even from within the BJP. State Vice President Khushbu Sundar called them disgusting and unacceptable, saying women should never be used to make a political point. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore too condemned the remarks, accusing Nagendran of stooping to low-level politics and demanding an unconditional apology. Amid the backlash, Nayanar Nagendran defended himself, saying he had no ulterior motive and had not targeted anyone personally. He alleged his speech was being twisted for political gain, saying his concern is for the mother, motherland and mother tongue.
2: சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பா வைங்க அம்மா வைக்கையே தேடுவாங்க. வீட்டுல போய் அம்மாட்ட கேட்டா தானே அப்பா யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சட்டமன்றத்தில போய் அப்பா வை தேடுனா யாரும் கிடையாது. இப்படிப்பட்டவங்க ஆட்சிதான் இன்னைக்கு நடந்து கொண்டுமா.
1: And well, the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, at an Independence Day event attended by AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
3: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
4: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पर बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
5: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए. दिखता है, सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है. अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
6: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
7: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा, पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। और पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
8: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए, सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे। बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे। सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है, उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
1: And while during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
9: आज जो इस समारोह में उपस्थित हैं, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
10: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
9: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
10: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
9: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
10: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
7: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajneetik virodhiyon ko lekar. बात ये है, हकीकत ये है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
6: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
10: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
1: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined seven streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaptidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the seven streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए. हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं. एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है. हमें वहां पहुंचना है. हमें उस जगह को हाथ लगाना है.
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: हमें इनोवेशन का हब बनना है. हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है. हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है. अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज उसको भी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना है. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए.
0: मोदी आल्सो डिटेल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड सीमलेस कनेक्टिविटी.
1: यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए. इनलाइन वाटरवेज चाहिए. एयरपोर्ट चाहिए. हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा.
0: Prime Minister also emphasized on strengthening domestic defense manufacturing and reduce its dependence on defense imports.
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा. नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी.
0: Prime Minister Modi also pointed out that innovation in clean energy technologies would be essential for meeting future energy requirements.
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है. हमें दुनिया में दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं.
0: Prime Minister Modi also mentioned that India's soft power was the seventh dhara or the seventh pillar to realize Viksit Bharat vision. As Prime Minister Modi lays down the roadmap for Viksit Bharat, India has already embarked on the journey to become a developed nation. Bureau Report, India Today.
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं. और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर.
0: Prime Minister Modi's big Yuva and Mahila outreach from the ramparts of Red Fort, and it came during Prime Minister Modi's Independence Day speech.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है.
0: Prime Minister Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
0: He announced free online coaching for various competitive examinations, said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
1: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore

0: Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
1: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया। यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है। यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
3: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिए कि हम कुछ नहीं खाएंगे, मेरा जो भी हो। लेकिन अब वो अंतिम समय, मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक कर रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था, तो उनको जाने नहीं दिया गया।
4: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो CS साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक है। अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर क्यों रखें? सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से। अगर यहाँ पे आप इलाज करते, इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं। कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं आप, उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं। तो ये सर, ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
5: नहीं, अभी स्थिति है, लुक लाइट काफ़ी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है। उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं, उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं। और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए, पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
0: But that is time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. To stay tuned to India Today.
6: You are watching India Today.

0: are watching India Today.
1: Tamil Nadu politics has witnessed yet another personal political spat with BJP state chief Nayanar Nagendran's remarks about Chief Minister Vijay's mother triggering widespread backlash. Nagendran has made a personal remark about Vijay's parentage, saying he should go home and ask his mother instead of looking for his father in the Legislative Assembly. He then linked the remark to the functioning of the state government. His remarks have drawn criticism even from within the BJP. State Vice President Khushbu Sundar called them disgusting and unacceptable, saying women should never be used to make a political point. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore too condemned the remarks, accusing Nagendran of stooping to low-level politics and demanding an unconditional apology. Amid the backlash, Nayanar Nagendran defended himself, saying he had no ulterior motive and had not targeted anyone personally. He alleged his speech was being twisted for political gain, saying his concern is for the mother, motherland and mother tongue.
2: சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பா வைங்க அப்பா வைக்கையே தேடுவாங்க. வீட்டுல போய் அம்மாட்ட கேட்டா தானே அப்பா யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சட்டமன்றத்தில போய் அப்பா வைத்தேன்னா யாருன்னு கேட்டாங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி தான் நடந்து கொண்டுமா.
1: And well, the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, at an Independence Day event attended by AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
3: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
4: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
5: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए, दिखता है सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
6: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
7: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। और पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
8: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे। बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे। सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
1: And while during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
9: आज जो इस समारोह में उपस्थित हैं, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
10: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
9: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
10: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
9: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
10: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
7: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajneetik virodhiyon ko lekar. बात ये है, हकीकत ये है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
6: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
10: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
1: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined seven streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaktidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the seven streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए. हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं. एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है. हमें वहां पहुंचना है. हमें उस जगह को हाथ लगाना है.
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: हमें इनोवेशन का हब बनना है. हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है. हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है. अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए.
0: मोदी ऑल्सो डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड सीमलेस कनेक्टिविटी.
1: यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए. इनलाइन वाटरवेज चाहिए. एयरपोर्ट चाहिए. हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा.
0: Prime Minister also emphasized on strengthening domestic defense manufacturing and reduce its dependence on defense imports.
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा. नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी.
0: Prime Minister Modi also pointed out that innovation in clean energy technologies would be essential for meeting future energy requirements.
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी हमें पाकर के रहना है. हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं.
0: Prime Minister Modi also mentioned that India's soft power was the seventh dhara or the seventh pillar to realize Viksit Bharat vision. As Prime Minister Modi lays down the roadmap for Viksit Bharat, India has already embarked on the journey to become a developed nation. Bureau Report, India Today.
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं. और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर.
0: Prime Minister Modi's big Yuva and Mahila outreach from the ramparts of Red Fort, and it came during Prime Minister Modi's Independence Day speech.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है.
0: Prime Minister Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
0: He announced free online coaching for various competitive examinations, said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
1: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore young people.
1: हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: Women's reservation also echoed from the ramparts of the Red Fort. In a special appeal, Prime Minister Modi urged the opposition to support the bill and give women the rights they deserve.
1: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: The Congress hit back at Prime Minister Modi.
3: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बाबा ही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर।
0: The two announcements put both education access and future employability at the center of the government's Independence Day message. Bureau Report, India Today.
2: For decades, India's journey to space had one name, ISRO. But now, a new generation of Indian companies is daring to rewrite that history. At the heart of this new chapter is Skyroot's Vikram 1, a rocket that could redefine how India reaches the stars. This Independence Day, Kshitija Gosavi takes you inside India's new space revolution and why this could be just the beginning.
4: 2-1-0.
5: India's first private orbital launch.
6: What Skyroot achieved on its first orbital launch took SpaceX's Falcon 1 4 attempts.
7: We blew up a rocket 3 times before finally reaching orbit.
6: And that's exactly why Vikram 1 is one of the biggest moments in India's space history.
8: We are opening space for all.
6: For decades, only ISRO could launch rockets from India. Until 2020, private companies couldn't independently develop and launch orbital rockets from India. If you wanted to reach space, ISRO was the only path.
7: When we started Skyroot in 2018, there was no policy at that time, there was no funding environment at that time, and there was no talent specifically trained in the private sector. So it was literally extremely difficult. So we had to build our own path and chart our own direction to be able to solve all these problems.
6: So when Skyroot Aerospace was founded in 2018, it wasn't just trying to build a rocket. It had to help build an entire new industry. The company had to develop its own rocket engines, carbon fiber structures, avionics, software manufacturing systems. Also raise millions in fundings for one of the riskiest businesses on earth. Work through a brand new regulatory framework and then integrate everything for a launch from ISRO Sriharikota spaceport. And here's the hardest part. A rocket gets one chance. It has to ignite perfectly, survive massive vibrations, separate its stages within seconds, accelerate to nearly 28,000 kilometers per hour, and place satellites into orbit with extraordinary precision. That's why maiden orbital launches are so difficult. And there's a very important point to note. Well, SpaceX's Falcon 1 reached orbit only on its 4th launch, after 3 consecutive failures. And what about Vikram 1? Skyroot's Vikram 1 reached orbit on its very first orbital attempt, a remarkable achievement for any new launch company.
7: So Skyroot is the new launch player globally. So there are only two companies which are regularly launched to space, which is SpaceX and Rocket Lab. And then now we, with our successful launch, now we are like opened access to space much higher.
6: And this isn't just win for Skyroot. It's the proof that India's space story is entering a new chapter, where private space companies don't just support missions. They build rockets, launch satellites, and compete on the global stage. And Vikram 1? Vikram 1 wasn't just carrying satellites. It was carrying the future of India's private space industry.
2: Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi, demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Ekka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendranath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
4: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
9: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया। यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है। यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
10: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिए कि हम कुछ नहीं खाएंगे, मेरा जो भी हो। लेकिन अब वो अंतिम समय, मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक के रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था, तो उनको जाने नहीं दिया गया।
11: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो CS साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक है। अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर क्यों रखें? सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से। अगर यहाँ पे आप इलाज करते, इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं। कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं आप, उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं। तो ये सर, ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
12: नहीं, अभी स्थिति है, लुक लाइट काफ़ी इम्बैलेंस है। सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए। पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
2: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
13: You are watching India Today.

धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: are watching India Today.
1: Tamil Nadu politics has witnessed yet another personal political spat with BJP state chief Nayanar Nagendran's remarks about Chief Minister Vijay's mother triggering widespread backlash. Nagendran has made a personal remark about Vijay's parentage, saying he should go home and ask his mother instead of looking for his father in the Legislative Assembly. He then linked the remark to the functioning of the state government. His remarks have drawn criticism even from within the BJP. State Vice President Khushbu Sundar called them disgusting and unacceptable, saying women should never be used to make a political point. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore too condemned the remarks, accusing Nagendran of stooping to low-level politics and demanding an unconditional apology. Amid the backlash, Nayanar Nagendran defended himself, saying he had no ulterior motive and had not targeted anyone personally. He alleged his speech was being twisted for political gain, saying his concern is for the mother, motherland and mother tongue.
2: சட்டமன்றத்திலே போய் அப்பாவை இருந்த அப்பாவை தேடுறாங்க. வீட்டுல போய் அம்மாட்ட கேட்டா தானே அப்பா யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சட்டமன்றத்தில போய் அப்பாவை தேடுறா யாரும் கிடையாது. இப்படிப்பட்டவங்க ஆட்சியில இன்னைக்கு நடந்து கொள்ளுமா?
1: And well, the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, at an Independence Day event attended by AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
3: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than, they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
4: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पर बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्य दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
5: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए. दिखता है, सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है. अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
6: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
7: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। आज पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
8: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे। बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है, सोनिया गांधी से सीखे। सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
1: And well, during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
9: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
10: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
9: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
10: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
9: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
10: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
11: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajneetik virodhiyon ko lekar. बात ये है, हकीकत ये है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं।
6: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
10: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
1: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined seven streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaptidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the seven streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए. हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं. एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है. हमें वहां पहुंचना है. हमें उस जगह को हाथ लगाना है.
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: हमें इनोवेशन का हब बनना है. हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है. हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है. अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना है. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए.
0: Modi also detailed the importance of development and seamless connectivity.
1: ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए. इनलाइन वाटरवेज चाहिए. एयरपोर्ट चाहिए. हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा.
0: Prime Minister also emphasized on strengthening domestic defense manufacturing and reduce its dependence on defense imports.
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा. नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी.
0: Prime Minister Modi also pointed out that innovation in clean energy technologies would be essential for meeting future energy requirements.
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है. हमें दुनिया में दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं.
0: Prime Minister Modi also mentioned that India's soft power was the seventh dhara or the seventh pillar to realize Viksit Bharat vision. As Prime Minister Modi lays down the roadmap for Viksit Bharat, India has already embarked on the journey to become a developed nation. Bureau Report, India Today.
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर मेरे देश के नौजवानों पर मेरे देश की माताओं को बहनों पर.
0: Prime Minister Modi's big Yuva and Mahila outreach from the ramparts of Red Fort, and it came during Prime Minister Modi's Independence Day speech.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है.
0: Prime Minister Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
0: He announced free online

0: युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
0: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore young people.
0: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: Women's reservation also echoed from the ramparts of the Red Fort. In a special appeal, Prime Minister Modi urged the opposition to support the bill and give women the rights they deserve.
0: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: The Congress hit back at Prime Minister Modi.
2: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं, जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं कर रहे आप लोग? अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर।
1: The two announcements put both education access and future employability at the center of the government's Independence Day message. Bureau Report, India Today.
3: Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Ekka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendranath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
4: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
5: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया। यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है। यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
6: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिए कि हम कुछ नहीं खाएंगे मेरा जो भी हो, लेकिन अब वो अंतिम

0: समय मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक कर रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था तो उनको जाने नहीं दिया गया।
1: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो सीएस साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक, अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर क्यों रखें। सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से, अगर यहाँ पे आप इलाज करते इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं, कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं, तो ये सर ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
2: नहीं, अभी स्थिति है लुक लाइट काफ़ी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है। उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं, और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए। पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
3: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. To stay tuned to India Today.
4: You are watching India Today.

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: Tamil Nadu politics has witnessed yet another personal political spat, with BJP state chief Nayanar Nagendran's remarks about Chief Minister Vijay's mother triggering widespread backlash. Nagendran has made a personal remark about Vijay's parentage, saying he should go home and ask his mother instead of looking for his father in the Legislative Assembly. He then linked the remark to the functioning of the state government. His remarks have drawn criticism even from within the BJP. State Vice President Khushbu Sundar called them disgusting and unacceptable, saying women should never be used to make a political point. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore too condemned the remarks, accusing Nagendran of stooping to low-level politics and demanding an unconditional apology. Amid the backlash, Nayanar Nagendran defended himself, saying he had no ulterior motive and had not targeted anyone personally. He alleged his speech was being twisted for political gain, saying his concern is for the mother, motherland and mother tongue.
2: சட்டமன்றத்திலேயே போய் அப்பா வைங்க அப்பா வைக்கிறது தேர்வாங்க. வீட்டில போய் அம்மாட்ட கேட்டா தானே அப்பா யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சட்டமன்றத்தில போய் அப்பா வைக்கிறதுனா யாரும் கிடையாது. இப்படிப்பட்டவங்க ஆட்சிதான் இன்னைக்கு நடந்து கொள்ளுமா?
1: And well, the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in Parliament. Meanwhile, at an Independence Day event attended by AIMIM leader Waris Pathan, the national song was not sung. Responding to the omission, Pathan said that while Muslims deeply respect Vande Mataram, no one can be forced to sing it. He cited Articles 25 to 28, which protect religious freedom, and said some lines could be considered shirk and therefore unacceptable to Muslims.
3: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
4: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पर बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
5: आज इंदिरा भवन के अंदर जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो दूसरे स्टैंजा के बाद सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए इशारे किए. दिखता है, सब वीडियोस में दिख रहा है. अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी. जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है. अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती कि हमने देश की आजादी के अंदर हमने हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है।
6: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
7: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा, पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। और पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
8: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए, सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे, बीजेपी को अगर देश के लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनका विश्वास जीतना है सोनिया गांधी से सीखे, सोनिया गांधी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
1: And while during his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
9: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: Prime Minister Modi has taken a fresh jibe at the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister warned of Dimagi Naxals lurking in the corridors of power and has effectively escalated the showdown with the Congress. Congress hit back within hours, calling him a master abuser. We are getting you this special report.
10: A new phrase, a fresh political flashpoint. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi launched a fresh attack. Speaking from the ramparts of the Red Fort, Modi declared that armed Naxalism has been all but eliminated. But he immediately pivoted to a new warning, to what he called the threat from Dimagi Naxals.
9: Jungalon mein hame hathiyari Naxalon ka khatma bulane mein, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।